नमस्कार। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 298 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोतो, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो घड़ी में समय भोर के 5:56 होने को हैं। अब कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण मीडियम वेव के 326.7 किलोमीटर यानी 298 किलोहर्ट्ज पर, इसके अलावा DRM के 909 किलोहर्ट्ज पर, FM के 100.1 MHz पर और मोबाइल ऐप के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर और लाइव स्ट्रीमिंग पर आप सुन पाएंगे।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है 918 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार बुलेटिन दिल्ली से लेके जाएंगे। समाचारों के पश्चात आप सुनेंगे वंदना कार्यक्रम। आइए समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर

0: पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, Prime Minister will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. These include inauguration of 232 grain storage godowns, Bhumi Pujan of Sahkar One, Bhumi Pujan of tissue culture facilities in Uttar Pradesh and Maharashtra, launch of National Cooperative Database, NCD 3.0, and Geotag mobile application, launch of National Dairy Development Board's Milk Supply Review Dashboard Portal. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the Special Investigation Team, SIT, probing the counting of donations received by the trust. The meeting will be held at the premises of Ram Temple at around 3 in the afternoon. According to an official notice issued on 28th of last month. The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Assam Cabinet has approved a series of

चराचर जगत के स्वामी परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के वंदना कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, उस परमेश्वर ने अपने बच्चों से हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने खजाने हम पर लुटा दिए। इस प्रकृति ने ऐसे ही अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, कहीं समुद्र, कहीं पहाड़, कहीं सपाट मैदान, कहीं रंग बिरंगे फूल, कितनी विविधता के साथ हम सबके लिए अपने खजाने खोले हैं। परमेश्वर का प्रेम देखें कि उसने पतित पावनी माँ गंगा को इस धरती पर भेजा, वो गंगा जो स्वयं भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण की, वो गंगा जिसने रघुकुल के अनेक पूर्वजों को तारा, वो गंगा जो कलिमल हारिणी है, जो पतित पावनी है, जो पावन है, जिसका नाम लेने से मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। आइए वंदना का शुभारंभ करें इस भक्ति रचना के साथ, जिसमें वर्णन है माँ गंगा का और भगवान भोलेनाथ का।

नरेंद्र चंचल और साथियों से आपने ये भक्ति रचना सुनी। तो प्रकृति ने जो अपने खजाने से अनमोल मोती हमें दिए हैं, उनको हमारे जो आदर्श, हमारे जो पौराणिक, हमारे जो ईश्वर के समतुल्य और हमारे लिए जो पूजनीय हुए हैं, उन सब ने उनका बहुत महत्व समझा और उसको उसी रूप में अपनी पीढ़ियों को भी सौंप कर गए। एक बहुत ही छोटी सी वस्तु जिसे स्वयं परमात्मा ने अपने समीप रखा और उसे इतना पावन कर दिया कि वह वस्तु हमारे लिए पूजनीय हो गई। और यह कोई एक वस्तु नहीं है, किसी भी जो हमारे देवी देवता है उनके पास देख लीजिए, कहीं शंख पूजित है, कहीं कोई पुष्प पूजित है, कहीं कोई अलंकार पूजित है, यहां तक कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन्हें भी देवताओं ने अपनी सवारी बनाया। यह सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि इस सृष्टि पर चूहे से लेकर हाथी तक सब जीव अपने आप में अनूठे हैं और सबकी आवश्यकता है। इकोसिस्टम यानी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए ये सभी जीव इस धरती पर होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अपने आप में एक श्रृंखला है। जीव जीव का भोजन है, जीव बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं, उन्हें खा जाते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। दूसरी तरफ बहुत से जीव हैं जो पर्यावरण को इतना शुद्ध कर देते हैं कि मनुष्य अगर वहाँ रहे उस क्षेत्र विशेष में तो उसे स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। केंचुआ जैसा जीव जो अपने जीवन काल में टनों मिट्टी को साफ करता है, उपजाऊ करता है। चूहे जैसे जीव को भगवान गणेश ने अपनी सवारी माना। ऐसा कोई जीव इस जगत में नहीं है जो हमारे लिए सम्मान का पात्र ना हो। बात करें 16 कलश संपूर्ण माँ यशोदा के राजदुलारे प्रभु श्री कृष्ण की, कृष्ण के पास श्रृंगार के लिए क्या था? कुछ पुष्प जो वरों से प्राप्त होते थे, कुछ लताएं जो पेड़ों पर लिपटी हुई होती थी उन्हें श्री कृष्ण अपने पर लपेट लेते थे, एक छोटी सी मुरली बांस की, एक मोर का पंख,

बस हो गया श्रृंगार। लेकिन कितनी सुंदर छवि उस मोर मुकुटधारी की, कितना सुंदर रूप। कहने का भाव ये है कि प्रकृति हमें सब कुछ सौंपती है, आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है कि हम उसका महत्व समझें और उसे उसी रूप में लें। आइए एक कृष्ण भजन सुने विपिन सचदेव और साथियों की आवाज़ों में।

भक्ति आराधना का दैनिक कार्यक्रम वंदना, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं कमल पारिक, आपका अपना रेडियो दोस्त, आज आपके साथ हाजिर हूँ। श्रोताओ, राजस्थान में न सिर्फ वीर क्षत्रिय पैदा हुए, बल्कि यहाँ के भामाशाह पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के रेतीले धोरों में अनेक भक्त भी हुए हैं। राजस्थान ने जन्म दिया, भक्त शिरोमणि कहलाई, मेवाड़ में जन्मी मीराबाई, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। प्रभु को भले किसी भी नाम से पुकारें, कृष्ण कहें, राम कहें, शिव कहें, जगन्नाथ कहें, वाहेगुरु कहें, खुदा कहें, गोड कहें, वो परमपिता परमात्मा एक ही है। मीरा ने एक पद लिखा था, उसे राजस्थान की ही गायिका सीमा मिश्रा और साथियों ने बड़े मनोभाव के साथ गाया है।

0: भक्ति संगीत की सुरीली यात्रा वंदना आपने तय की आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ पर। वंदना के पश्चात यह समय है आध्यात्मिक दर्शन के दैनिक कार्यक्रम चिंतन का, आइए सुने।
1: तृष्णा, भोगे हुए पदार्थ को पुनः भोगने की इच्छा होती है। शरीर में दसों इंद्रियां पूर्व में उपभोग की हुई वस्तु को बार बार मांगती है। मन में इच्छा होती है, कल समोसा खाया था वैसा ही आज बनाओ, बड़ा स्वादिष्ट था, ये स्वादेंद्री की चाहत है। अमुक की आवाज में वे गीत बड़ा मार्मिक था, बार बार सुनने को जी करता है, वास्तव में यह श्रवणेंद्रिय की इच्छा है। मैं तो अमुक इत्र को पसंद करता हूं, उसको पाने की इच्छा रहती है, क्या करें आजकल मिल ही नहीं रहा है, यह घ्राणेन्द्रिय की लालसा है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्री अपनी भोगी हुई वस्तु को पुनः पुनः भोगने की इच्छा करती रहती है, यही तृष्णा है। और परम विचारक महर्षि अष्टावक्र जी ने कहा है कि यह संसार तृष्णा है, यदि तृष्णा नहीं तो यह संसार ही नहीं, तृष्णा का अंत ही मोक्ष है। जीव मौजूदा जीवन में तृष्णा के माध्यम से पारलौकिक जीवन के लिए पोटली बांधता है। इस पर भर्तृहरि का एक मार्मिक श्लोक है, वलिभीर मुखमाक्रांतम पलितेनांकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। अर्थात इस क्षीयमान संसार में सब कुछ दिनों दिन क्षीण हो रहा है, घट रहा है। बचपन और जवानी का सुंदर शरीर, मुख की कांति, वली पलित अर्थात सफेद बाल होना आक्रांत हो रही है। सनई सनई इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, सब कुछ बूढ़ा हो रहा है, परंतु तृष्णा ही एक ऐसी है जो प्रतिदिन जवान हो रही है। जीवन में एक भ्रमजाल है जो जीव यानी मनुष्य को आलोड़ित करता रहता है। उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति सोचता है मैं यदि उच्च पदासीन हो जाऊं तो फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति उच्च पद भी प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद क्या ये तीसरी हो जाती है? नहीं, अब तो वह आगे फिर पुनः पदोन्नति प्राप्त करने की होड़ में लगा रहता है।

जो उच्च पदासीन है ऐसा प्राप्त करके भी पुनः पुनः उसी की मांग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि तृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है। महर्षि अष्टावक्र जी ने यही कहा है कि जब तक तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, कुछ महसूस करने वाली है, तब तक तुम संतुष्ट नहीं हो सकोगी। तृष्णा का अर्थ ही यह है, और चाहिए और चाहिए। और क्यों चाहिए, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि तृप्ति नहीं हुई इसलिए ये मन अधिक चाहता है। ये मन अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाकर अपने जंजाल में फंसा ही लेता है, क्योंकि तृष्णा ही संसार है और तृष्णा से मुक्ति ही मोक्ष है। अतः तृष्णा को त्यागो और सुखी हो जाओ। सुख की कामना तो सबको रहती है, परंतु सुखी कोई नहीं। शरीर वृद्ध हो जाता है, परंतु तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, वह तो दिनों दिन तरुणी होती रहती है। यहां पर प्रत्येक वस्तु पदार्थ प्राणी मात्र को एक न एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाना है। संसार परिवर्तनशील है, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, उसका नाश भी नहीं होता। घर बन जाए ये आवश्यकता है, अच्छा बन जाए ये इच्छा हुई, और एक नहीं दो तीन होने चाहिए, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा रूपी अग्नि की लपटें प्रतिपल मनुष्य को जलाती रहती है। हम तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाना चाहते हैं तो इच्छा रूपी लकड़ियां डालते रहेंगे तो क्या अग्नि बुझ सकती है? नहीं, वह आग कभी बुझने वाली नहीं है। हमें ईंधन डालना बंद करना होगा। सुख को त्याग दो तो सुख की मजाल नहीं कि वह तुम्हारे पास न आएगा, और सुख को चाहते रहो तो मजाल है दुख तुमसे दूर चला जाए। ये अष्टावक्र जी का उल्टा गणित है। सुख को त्यागो सुखी बन जाओगे, और सुख को मांगो दुखी हो जाओगे। सुख को त्यागो, सुख की तमन्ना मिटी कि सुखी हो गए। अभी यह बाकी है, अभी वह बाकी है, यही संसार बंधन है, और नहीं यही मोक्ष है। जितना है पर्याप्त है। अतृप्ति अर्थात अशांति, जो तृप्त हो गया उसे मृत्यु का भी भय नहीं है।

आध्यात्मिक दर्शन का दैनिक कार्यक्रम चिंतन आपने सुना। आलेख और वाचक स्वर शिव दयाल शर्मा के थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब जानिए आज के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:10 पर खेती नमस्ते कार्यक्रम होगा। जानकारी सुनिएगा फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। मानसगान 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे। लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात का प्रसारण किया जाएगा 7:30। प्रातः 8:45 पर समाचार तरंग हम अपने जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल होगा 9:10 पर। कलाकार होंगे कमलेश भारद्वाज। मधुर फिल्म गीत आप सुन पाएंगे 9:30 से। 9:30 होगा फिल्म संगीत, 10:00 आज के फनकार, 11:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत बाहर और 12:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित सैनिकों के लिए। दिन में 12:30 सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। खेत खलिहान में सुनिएगा जानकारी प्राकृतिक खेती लाभकारी कृषि पद्धति। प्रसारण समय दिन में 12:50। मधु पुरोहित हाजिर होंगी महिला जगत कार्यक्रम के साथ दिन में 1:05 पर। शरीर में आयरन की कमी, इसके लक्षणों और निवारण विषय पर जानकारी देंगी। मानसून स्नैक्स के बारे में बताएंगी। चर्चा होगी अपनापन और प्यार, जोड़े परिवार, कुछ ब्यूटी टिप्स दिए जाएंगे और मधुर फिल्म गीत इस प्रोग्राम में सुनवाए जाएंगे। प्रसारण समय होगा 1:05। फिल्म संगीत सुनिएगा 2:30 पर। हमारी उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे 3:00 से। युववाणी कार्यक्रम में आज के इतिहास के अलावा

0: कुछ चर्चा के विषय रहेंगे। बाल विवाह मुक्त भारत, अल्पसंख्यकों की मलिन होती बस्तियों में सुधार, जन संचार में रेडियो का महत्व, संगीत का महत्व और ऐसे ही अनेक टॉपिक्स इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। युवा श्रोताओं के मनोरंजन हेतु कुछ फिल्मी गाने भी सुनवाए जाएंगे। सराय की जुबान पर आधारित झोंक माहिती कार्यक्रम होगा संध्या 6:05 पर। शाम 7 बजे सुनील शर्मा चौपाल कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। उपलब्ध होने पर बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण परिवारों के लिए गीत व भजन सुनवाए जाएंगे। साथ ही कुछ जानकारियां होंगी, जैसे बेर के बगीचों में सामयिक कार्य, मुर्गी पालन, चारे वाली फसलों में ज्वार व लोबिया की बुआई। फिल्म संगीत होगा संध्या 7:45 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कुछ जानकारी, कुछ फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स केंद्र रात्रि 8:30 हम दिल्ली से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनेगा रात्रि 9:15 पर। पब्लिक स्पीक यह कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 बजे। खेल जगत कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 10:30 बजे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रीय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्न संग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमि पूजनम्, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाष अनुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 50,000+ जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिंहा श्वः नुवान पहलगाम इति आधारशिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्र

0: वाद वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तर प्रदेशे पंजाबे चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं

0: The Chief Minister Himanta Biswa Sarma said the Cabinet approved several bills to be introduced during the ensuing Assembly session. The Cabinet also approved an integrated emergency response system under the 112 helpline with an outlay of 100 crore rupees. In Kerala, orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts, indicating the likelihood of isolated very heavy rainfall. Yellow alert has been issued for 6 other districts, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated very heavy rainfall is expected in the northern districts of Kerala tomorrow also. Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat to Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:10 हुए हैं। प्रगतिशील किसान भाई सुने कार्यक्रम खेती रवास्ते। जानकारी का विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व।
2: किसान भाइयों, मेंढका और पशु में जिया भोजन की आवश्यकता पड़े, बियाई पौधा ने भी विकास करन वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आपां बात करा फसलों ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध करावा। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप शू भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग शूमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बा सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करें। जीवन चक्र पूरा करन वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो बिंगमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन हुआ है और पौधों तेजी हूँ बढ़वार करे इंगमा भी नाइट्रोजन को संयोग हुआ है। बुंटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करे। अब आपा किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधा को जिको पत्तियाँ हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियाँ छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को निकरे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी होवे, बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव होवे। दूसरे पोषक तत्व की बात करा जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे, बुंटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चल है जिया फसल है बिंगी पत्तियां जी की है वह छोटी रह जाएगी और पत्तियां के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे भी आपने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करन वास्ते आपने फास्फोरस युक्त खाद जिया डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जाँच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे इन वास्ते जिके समय अपा फसल की बिजाई करा बी समय फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा अपा पोटाश की। पोटाश जी की है बा पत्तियां गे माँ जी को भोजन बने बिना पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसलों में रोग ना लगे जिया पालो सूखो खराब ना करे बीहूँ भी आ रक्षक रहे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिंगी गुणवत्ता ने कायम रखे है। पोटैश की कमी को पतो आपने चल है पतो कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हो है, तनों कमजोर हो जाए और जिये तेज हवा चले तो पौधो नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटाश की कमी पूर्ति करने वास्ते आपने पोटाश युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटाश को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी

छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता होवे। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट लो है, फेरस सल्फेट, मैगनीज है, बीमा मैगनीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटास बुआई के टाइम पर ही देना आपा, और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में 2 या 3 बार आपा ने छिड़काव करना होसी। किसान भाइयों आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आपा सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा। बीहू आपा ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इंगमा कमी है। तो अबे मैं चालू राम राम सा।

लोक भजन आपने सुना, महेंद्र सिंह पंवार कलाकार थे। 7:20 हो चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस पर आधारित तो दैनिक कार्यक्रम मानस गान का समय हुआ है। इन दिनों आप सुन रहे हैं सुंदरकांड का सस्वर पाठ। आज प्रस्तुत है भाग 296, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक ही वाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाएगी।

मानस गाना आपने सुना, मुख्य स्वर था सुरेश वाडकर का। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 7:30 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात।

पूर्व सुहाने आए रे, पूर्व और पश्चिम फिल्म का ये गीत आपने सुना। श्रोताओ, जब इंसान संघर्ष करता है, अपना खून पसीना बहाता है, मेहनत करता है, और फिर उस संघर्ष की बदौलत पैदा हुई फसल को काटता है, या कहें कि उसका परिणाम प्राप्त करता है, कुछ सफलता हासिल करता है, तो उसकी खुशी इतनी शानदार होती है कि उसको शब्दों में बयान करना बड़ा

मुश्किल है। जो लोग सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, या कहें कि जिन्हें बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त होती है, वो लोग मेहनत का, उसके परिणाम का महत्व नहीं समझ पाते। कुछ एक लोग किस्मत के धनी होते हैं तो कुछ लोग अपने हाथों अपनी किस्मत लिखते हैं। हम उन सभी संघर्ष के साथियों को सलाम करते हैं जो मेहनत से नहीं डरते और मेहनत करके अपने हाथों में वो लकीरें पैदा करते हैं जो तकदीर ने उन्हें जन्म से नहीं दी। इंसान को कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। बहुधा देखने में आता है कि खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, उन्हें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तत्काल चाहिए, जबकि सफलता कोई रेडीमेड आइटम नहीं है जो हमें तत्काल उपलब्ध हो गया। उसके लिए लगातार प्रयास करने जरूरी हैं, उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है, उसके लिए पढ़ना, अध्ययन करना, जानकारी हासिल करना और उस दिशा में काम करना जरूरी है। एक किस्सा है, और किस्सा कुछ यूं है कि एक बार एक नन्ना बालक अपने घर के बाहर बड़े उपवन में, बगीचे में टहल रहा था। उसकी नज़र एक सुंदर तितली पर पड़ी। उसने तितली का पीछा किया। तितली कभी इस फूल पर, कभी उस पौधे पर, कभी कहीं किसी वृक्ष पर बैठती। बच्चा बड़ी कौतूहल भरी निगाहों से उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसने देखा कि तितली एक बिल में जाकर के छिप गई, फिर उसमें से बाहर निकली और फिर से उसने वही क्रियाकलाप शुरू किया। बच्चों को बड़ी उत्सुकता हुई। दूसरे दिन जब वह सुबह उठा तो उसने उस तितली को खोजना आरंभ किया। तितली उसे नहीं दिखी और वह उस तितली के घर के पास चला गया। उसने पाया कि वहां से एक नन्ना जीव बाहर निकलने की कोशिश में है। बालक ने कुछ देर उसे देखा, उसे डर लगा कि कहीं ये मेरे पर हमला न कर दे, हिंसक न हो, काट न ले। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके एक तिनका उठाया और उस तितली के रहने के स्थान को तोड़ दिया और वो नन्ना जीव जो संघर्ष कर रहा था बाहर निकल आया। उस बच्चे को खोजते हुए उसकी माँ वहां पहुंच गई। उसने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तब उस बालक ने पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि तुमने इस जानवर की रक्षा करने के लिए, इसके संघर्ष को कम करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए जो काम किया है, तुम्हारी सोच तो ठीक है लेकिन यह इसके लिए नुकसानदायक हो गया। बालक ने पूछा कि माँ, मैंने इसकी सहायता की, यह जिस बिल में से बाहर आना चाहता था उससे बाहर निकल आया, लेकिन इसके लिए नुकसानदायक कैसे हुआ? फिर उसकी माँ ने उसे बैठा करके प्रेम से समझाया कि बेटा, जब यह जीव इस बिल में से बाहर आने का प्रयास कर रहा था तो उससे इसकी जो खुद की पसलियां हैं, जो पंख हैं, जो इसकी आंतड़ियां हैं, जो इसका शरीर है, वह मजबूत हो रहा था और वह इसे बाहर इस धरती पर विचरण करने में, आकाश में उड़ने में मदद करता। लेकिन तुमने उस संघर्ष को बीच में रोक दिया। अब यह जीव इस भूमि पर मात्र रेंग सकता है, उड़ नहीं सकता। बालक को बात समझ में आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने का भाव यह है कि संघर्ष

किसी भी इंसान को एक बार लगता जरूर है कि परेशानी में डाल रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि संघर्ष किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं है, संघर्ष को हंस करके स्वीकार करें, उसका मुकाबला करें और यकीन जानें कि वो परमात्मा आपके साथ है। संघर्ष में आपको ही विजयश्री प्राप्त होने वाली है और संघर्ष से मिलने वाली सफलता आपके चेहरे पर एक अद्भुत चमक उत्पन्न करती है और यदि ऐसे में व्यक्ति को परिवार का साथ मिल जाए, उसे सही दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति मिल जाए, मार्गदर्शक की उपलब्धता हो जाए, तो वह संघर्ष कुछ आसान हो जाता है और एक दिशा में पूरी ताकत के साथ किया गया संघर्ष हमें सफलता प्रदान

और यदि ऐसे में व्यक्ति को परिवार का साथ मिल जाए, उसे सही दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति मिल जाए, मार्गदर्शक की उपलब्धता हो जाए, तो वह संघर्ष कुछ आसान हो जाता है और एक दिशा में पूरी ताकत के साथ किया गया संघर्ष हमें सफलता प्रदान करता है। संभवतः इसीलिए मनुष्य ने समुदाय में, समाज में रहना शुरू किया और आज भी इंसान को तलाश रहती है एक सच्चे इंसान की, और इसी उम्मीद में आजीविका उपार्जन करने के साथ साथ वह सच्चे साथी की तलाश में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।

कुछ इसी तरह के भावों का एक गीत समझौता फिल्म में है जो हम आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने इस गाने को गाया, वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत है। संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आइए सुनें।

0: श्रुतोक गीत हम आपको सुनवाते हैं, थोड़ा समय उसमें लग रहा है, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमने आपसे वादा किया है तो ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, और जो लोग देर से हमारे साथ जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का सुप्रभात कार्यक्रम लेकर के मैं आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारीक आज आपके साथ हूँ।
1: सुनिए, कहिए, यहाँ कोई रहने के लिए जगह मिलेगी?
2: रहने की जगह? हाँ क्यों नहीं, ये ताजमहल, सन एंड सन, अम्बेसडर, टॉक ऑफ द टाउन, किंग इंटरनेशनल, जू होटल वगैरह वगैरह सब आपके लिए तो बना है, मगर जेब में कुछ पैसे होने चाहिए।
1: पैसे मेरे पास है, 4 रुपए 40 पैसे।
2: अरे लल्लू, 4 रुपए 40 पैसे में कहा मरने के लिए जहर नहीं मिलेगा, और मर गए तो जलने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, और जल गए तो ऊपर पहुंचने के लिए टिकट नहीं मिलेगा, समझे? कहाँ से आए हो?
1: शाहजहांपुर से।
2: क्या बात, शाहजहांपुर से बेटा? अरे रास्ते में और कोई दूसरा स्टेशन तो मिला ही नहीं होगा।
1: मैं गाँव से सीधा यही आ रहा हूँ, मैं गवैया हूँ।
2: बहुत अच्छा बेटे, गवैया। क्या नाम है लल्लू? मोहम्मद रफी? नहीं नहीं, किशोर कुमार होगा।
1: नहीं नहीं,
2: तेरी के मुकेश होगा।
1: मेरा नाम मुकेश नहीं है, मेरा नाम गोपाल है।
2: गोपाल? लल्लू मेरे लाल गोपाल, उल्टे पाओ शाहजहांपुर लौट जाओ बेटा। यहाँ तुम्हारे गले की तारीफ करने वाला कोई नहीं मिलेगा, गला काटने वाले 1000 मिल जाएंगे। ये शहरी हजार बेटा, यह कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, इंसान इंसान का खून पीता है।
1: आप मेरा गाना सुन के देखिए ना, आप इस पे विश्वास क्यों नहीं करते? ये सोने की चेन मुझे उसी नाम में मिली है।
2: छुपाले छुपाले छुपाले, ये सोने की चेन तेरे लिए मौत का पैगाम बन जाएगी। इस शहर में सोना महंगा है, जान सस्ती है, तुझे अब तक मालूम नहीं है शायद। एक काम कर, एक काम कर, तू उल्टे पाओ यहां फुट जा, फुट फुट, चल चल भाग भाग भाग। साला शाहजहांपुर से आए हैं, भाड़ू है बाबा बेटा।

बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। एक उम्मीद के साथ इंसान अपना जीवन आरंभ करता है, नित्य प्रति उठने के बाद एक उम्मीद के साथ अपने दैनिक क्रियाकलाप शुरू करता है और उसी उम्मीद के सहारे उसके सारे काम होते चले जाते हैं। आशा अमर धन है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान फिजिकली टूट भी जाए, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर भी हो जाए, लेकिन अगर मानसिक रूप से मजबूत है तो उसे कोई कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो हरा नहीं सकते। और फिर यह कायनात या प्रकृति व ईश्वर वह हमारे प्रयासों को देखता है, उसके पास हमारे कर्मों का पूरा हिसाब है। अकर्मण्यता हमें क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक सुख के लिए आवश्यक है कि हम काम करें, अपने कर्तव्य को पूरा करें। कर्तव्य जो खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज और राष्ट्र के प्रति है, उस पर हमें ध्यान

देना होगा और अपने सभी मोर्चों पर सफल होना होगा। आइए सुप्रभात कार्यक्रम में यशुदास की आवाज में संपर्क फिल्म का ये गाना सुनें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6-8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी।

0: के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35

0: से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जन

0: members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राज़ील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: उम्मीद है कि जनाब प्रावो सुबियांतो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली मैदान सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हज़ारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादरे वतन से अपने राबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारफीन उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक़वामी तंजीमें, सारफीन तहफ़ुज़ाती हुक्काम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीक़ैन यकजा होंगे और सारफीन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारफीन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज़ शामिल।

0: जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुजाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये दो रोज़ा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के ज़ेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे, ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
2: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, ऑपरेशनल राबताकारी, सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाली मुनशियात, जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरा से निपटने के लिए मुशतरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अक्वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल करेंगे। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की दो रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनक़द होगी। तफसील हमारे नमानिगार से।
0: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और अखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाज़त से दीगर मामलों पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के ईको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहाइशगाह पर मुनक़दा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाए अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बीसवा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें

0: इलाज अकीदत पेश किया है। जना मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजूं खिराजी अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं ने मामूल की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ ज़िले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी ज़िले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाक़े में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िलों में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ ज़िले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली ज़िलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राज़ील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साला नेमार ने ब्राज़ील की जानिब से सबसे ज़्यादा बैन अल-अक़वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राज़ील की 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त ख़त्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग आलान ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल ज़रूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फ़र्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राज़ील की फ़ुटबॉल के एक शानदार बैन अल-अक़वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राज़ील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेज़ी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा। ये मुज़ाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में LNG सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एजय शंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई, तजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मसनू ज़हानत AI से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश

0: خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں حوصلے، وطن پرستی اور بے لوث خدمت کی ایک لافانی مثال قرار دیا ہے۔ اور نیمار جونیئر نے فیفا عالمی کپ میں 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی ناروے کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ 8:45 ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ہمارا اگلا کاریکرم سنیں گے۔
2: نمسکار، آکاشوانی جےپور اجمیر سے پرستت ہیں سماچار ترنگ۔ آج کے سنک میں میں مادھوری وششٹھ
3: اور میں رتیکا گپتا
2: آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ آج کے سنک میں ہم بات کریں گے پردیش کو ملی وبھن سوغاتوں کے بارے میں، اور سنیں گے پردھان منتری نریندر مودی کے راجستھان یاترا کے دوران دیے گئے ادبودھن کی خاص خاص باتوں کو۔
3: پردھان منتری نریندر مودی نے بالوترا کے پچپدرا میں دیش کی پہلی گرین فیلڈ ایک ایک۔
1: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے۔ 8:45 ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ہمارا اگلا کاریکرم سنیں گے۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। आज के संक में मैं माधुरी वशिष्ठ
3: और मैं रितिका गुप्ता
2: आपका स्वागत करते हैं। आज के संक में हम बात करेंगे प्रदेश को मिली विभिन्न सौगातों के बारे में, और सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान यात्रा के दौरान दिए गए उद्बोधन की खास खास बातों को।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश की औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के इस संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा।
2: प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया।
3: श्री मोदी ने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4-लेन निर्माण का उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया।
2: प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया।
3: ये सभी सौगातें देने के अलावा प्रधानमंत्री ने बालोतरा में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ने हमेशा से ही स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है। यहाँ से रिफाइनरी का उद्घाटन होना बड़ी उपलब्धि तो है ही, साथ ही देश के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ।
2: अपने संबोधन में आगे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों रिफाइनरी में लगी आग की घटना के बावजूद उसे इतना जल्द दुरुस्त कर लेने और काम को पूरा करने के बारे में खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है।
4: आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है, और न ही अपनी रफ्तार कम करता।
3: श्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के शिल्प की भी प्रशंसा की।
4: आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने जोधपुर के लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि हवाई अड्डे के इस नए टर्मिनल से मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को गति मिलेगी।
4: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

0: साथी, अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: श्री मोदी ने नियुक्ति पत्र मिलने वाले युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
0: आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध के समय पूरा विश्व ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब भारत अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ इन परिस्थितियों में अड़िग खड़ा रहा। ये देश का बहुत बड़ा सामर्थ्य है।
0: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री ने रसोई गैस की उपलब्धता संबंधित चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि गल्फ देशों से गैस की आपूर्ति नहीं हो रही थी, मगर हमने इन सब हालात का सामना किया। खासतौर पर राजस्थान की धरती ने इन चुनौतियों का मुकाबला करना सिखाया। सरकार ने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस करना शुरू किया।
0: राजस्थान की धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था, उन्हें भी इसके लिए कन्फिगर किया गया।
1: यही नहीं, सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ने दिया।
0: जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखा और जहां दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया, लेकिन भारत पे पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा उछाल नहीं आया।
0: हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40-50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए।
1: प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में युद्ध और उससे उपजी अशांति से किसानों के लिए उत्पन्न हुई चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार किसानों का हाथ थामे खड़ी रही।
0: हम अपने किसानों को

0: जो दुनिया के बाजार में 3000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्प की रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी, दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की।
1: उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई का भी ध्यान रखा और इसीलिए सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आई।
0: इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमई को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमई के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने इस अवसर पर एक पौधा लगाया और कहा,
0: आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के साथ ही मुझे यहाँ पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला। ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है।
1: श्री मोदी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है।
0: हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है, खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहाँ विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए।
1: श्री मोदी ने राज्य में संचालित जल संचय जन भागीदारी अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये अभियान जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को बधाई भी दी।
0: राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉकपिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉकपिट्स बनाए गए। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वॉटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब भी कोई संकल्प लेता है और कोई लक्ष्य बनाता है तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। इसलिए आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें विकास के नए आयाम छूने हैं।
0: साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: तो श्रोताओं, आज की कड़ी में इतना ही। समाचार तरंग के एक अन्य अंक में फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामनाथ मीणा।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है प्रादेशिक समाचार, जयपुर से लेके जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वे 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी कल वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्याकार्ता जाएंगे, जहां वे प्रम्बनन मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने भारत के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरू क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और यात्रा के आखिरी चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में शिरकत करेंगे, जहां वे राजस्थान की सहकारिता मॉडल की सफलता को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि सहकारिता ग्रामीण समृद्धि और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है और राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने का लगातार प्रयास कर रही है। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में कल विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश में शानदार प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत होगा। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ. मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही विचार गोष्ठियां और अन्य आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डॉ. मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। अजमेर के पंचशील मल्टी

0: पर्पज स्टेडियम का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम होगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने डॉक्टर मुखर्जी के नाम के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पत्र को मंजूर करते हुए निर्देश जारी किए हैं। 80,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें आधुनिक खेल संरचना विकसित की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे देश के विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में मुकंदरा टनल से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मुकंदरा टनल निर्माण के दौरान टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले मार्ग पर वन्य जीवों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपास के निर्माण में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण का ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता के साथ समय पर मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के अधूरे काम को जल्द पूरा करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर तथा आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप से 500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरोह के मुख्य सरगना को पुणे से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लोन देने के बहाने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों के दस्तावेज हड़पता था और फिर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। आरोपी अपने नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ता था और सदस्यों को कमीशन का लालच देकर अन्य लोगों को फंसाता था। शिकायत मिलने पर स्टेट साइबर क्राइम जयपुर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने इस मामले की तह में जाकर आरोपी को पकड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बोर्ड सचिव नीतू यादव ने बताया कि विद्यार्थी 6 अगस्त तक परीक्षा शुल्क के साथ चालान जनरेट कर सकेंगे। शुल्क 11 अगस्त तक निर्धारित बैंकों में जमा करना होगा। अंतिम तारीख के बाद लेट फीस के साथ 1 सितम्बर तक आवेदन का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में मॉनसून दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, वनस्थली, फलौदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रतापगढ़ में 1 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई।
1: जिले में मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। भारी गर्मी और उमस के बीच रविवार को 12 शहर समेत जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। 12 शहर में 23 mm, अटरू में 2, शाहबाद में 30 mm और किशनगंज में 2 mm बारिश दर्ज की गई। जिले के गौगांठ, हरनाउदा साजी, पलाइता समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई। जिले के केलवाड़ा और हरनाउदा साजी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम और रविवार को बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे 3 किसानों की मौत हो गई। देवरी कस्बे में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और करीब 40 मिनट तक जोरदार बारिश हुई, जिससे सुबह से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 5-6 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता।

0: प्राथमिकता। और प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 900 पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने मरु मंगल। कलाकार हैं कमलेश भारद्वाज।

मरुमंगल कार्यक्रम में भी आपने कमलेश भारद्वाज से राजस्थानी लोक रचनाएं सुने। आकाशवाणी का ये कॉर्नर सिटी चैनल सूरतगढ़ है। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब से यानी सुबह 9:30 बजे से दिन में 12:30 बजे तक लगातार आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। सुबह 9:30 बजे होगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आज के फनकार होगा 10 बजे। 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत बहार। 12:05 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा।

हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के ठीक 9:30 बजे हैं। आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी सूरतगढ़ को। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव पर 326.79 यानी 918 kHz। साथ ही साथ हमारे प्रसारण आपके लिए FM के 100.1 MHz, DRM मोड पर 909 kHz और आपके अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से जारी हैं। आइए सुने फिल्म संगीत प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति।

हिंदी भर का गीत आपने सुना, राजेश रोशन का संगीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है फिल्म कामचोर।

ये दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, नगमा निगार एस एच बिहारी, मौसी की तरतीब दी शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

0: शो तो आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को 918 किलोहर्ट्ज पर। आज आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारिक। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी का लिखा गाना है, फिल्म का नाम है साजन।
1: की डोर

ये आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की। मजरूह का लिखा गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इंतकाम फिल्म का गाना राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साजों से निकली, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी से ने इसे गाया।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गाना आपने सुना, लक्ष्मीकांत बैरलाल के संगीत निर्देशन में, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था इंतकाम। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं कमल पारीक, आपका अपना रेडियो दोस्त, आज आपके साथ हूँ। प्रोग्राम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजें। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है चरित्रहीन।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: समय मिला लें, सुबह के ठीक 10 बजे हैं। फिल्म संगीत के प्रोग्राम आज के फनकार में आइए सुने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना, अनजान का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दिल तो है दिल, दिल का एतबार न कीजिए। अनजान ने क्या खूबसूरत गाना लिखा। वहीं साहिर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी एक खूबसूरत सा गीत रवि के संगीत निर्देशन में लिखा था। लता मंगेशकर ने इसे गाया था फिल्म एक महलों सपनों का। आइए इसे सुने।

हसरत जयपुरी का लिखा गाना सुने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है असली नकली। श्रोतो, आपने ट्यून किया है हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को। मैं आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारीक आज आपके साथ हूँ। गीतों का संकलन है भाई नवीन सिसोदिया का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ही हैं जो देते हैं आपको आपके मनोरंजन की फुल गारंटी।

लता मंगेशकर को सुने मजरूह का लिखा गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई मीठी सी धुन। फिल्म का नाम, फिल्म के नाम पर मत जाइए दोस्तों, गीत यकीनन अच्छा होगा। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह का लिखा गीत आपने सुना है। फिल्म थी पत्थर के सनम। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का कलाम सुने किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं जाता हूं जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं
2: थोड़ा भी नहीं,
1: नहीं
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं

लता मंगेशकर और आशा भोसले को सुने। आए दिन बहार के इस फिल्म के लिए गीत लिखा आनंद बख्शी ने, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म आए दिन बहार के। अब ये गीत आपने सुना। गीत के बोल थे, ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे संगीत से सजाया खय्याम ने, कलाम शहरयार का, आवाज आशा भोसले की, और फिल्म का नाम उमराव जान। श्रोता उस समय मिला लें, सुबह के ठीक 10:30 बजे हैं। गीत के बोल हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का नाज, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, और कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाएं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया गाना हम आपको सुनवा देते हैं। उजाला फिल्म के लिए गीत लिखा हसरत जयपुरी ने।

मंगेशकर बहनों की आवाज़ में सुने सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गाना। फिल्म का नाम है आज़ाद।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारणों का मतलब आपके मनोरंजन की गारंटी। इसी गारंटी को बरकरार रखते हुए स्मृति बोहरा आपके समक्ष हाजिर होंगी कुछ ही पलों पश्चात। अब सुनिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गाना। फिल्म का नाम है नागिन।

श्रोता अभी आज की फनकार कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

गीतों के रंग न हो तो नीरस है ये जीवन, सरगम के सुर न छिड़े तो सूना है मन का आंगन, गहरे ये रिश्ते हैं संग रोते हंसते हैं, सुख दुख के सब मौसम तो आखिर गीतों में ही तो बसते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपकी मनपसंद गीत हम आपको सुनवाएंगे आपके पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। कार्यक्रम गीत बहार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सहस्नेह नमस्कार।

लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का हम गीत आपको सुनवाते हैं और इस गीत के लिए फरमाइश आई है शिवपुरी से मोनिका जैन की, कोटा से कविता शर्मा, अंबिकापुर से चरणजीत कौर सिंधु की और बांसवाड़ा से हमारे श्रोता है मीनाक्षी, संजय हिराली और पार्थ उपाध्याय। ये संदेश हमें मिला है कवाई सालपुर जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव का। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेदमीढ़ा अलकामीढ़ा, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और ये फरमाइश है कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी, इद्रिश, नीरू मीना और इरफान मीना और कासिफ मीना की। ये फरमाइश है दत्रिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

इस गीत के लिए फरमाइश आई है आप सभी की अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका मनीष सहारण, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और ये फरमाइश आई है गांव खोकरावाली से विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारसा की। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हमारे श्रोता है रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ये फरमाइश है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार की। बुलढाणा इस्लामापुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता है सहदेव दामोदर, शशिकला, कुमारी साधना और सुमेध कुमार दामोदर। ये श्रोता है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबाना और यश मंसूरी की। और ये फरमाइश है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदेश जौहरी की। और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है गांव हीरावाली फाजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, सरवन रिंडवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम, किरोड़ी लाल। और आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

फिल्म सागर से ये गीत लिया है हमने। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। जावेद अख्तर की शब्द रचनाएं और संगीत आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हमारे श्रोता है विक्रम कडवासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव, किरसन मायल, हनुमान साहरण, किडूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज, कालका और बिट्टा बजाज। ये हमारे श्रोता है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रमीला, भावेश, सनी और इस गीत के लिए फरमाइश आई है बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी और ये श्रोता है अलकबीर। और इसी गीत के लिए फरमाइश है भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। ये फरमाइश आई है गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया की। और ये फरमाइश है

गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल निशा, करणपुर से पवन कटारिया, समीर शालू कटारिया, गंज डूडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही। ये फरमाइश है सुल्तानपुरा उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अरविलर सिंह की। लीजिए आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

फिल्म का नाम है आए दिन बाहर की। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, अभी आप गीत बहार कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों के माध्यम से। ये संदेश हमें मिला है गांव बांडीवाला फाजलिका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा का। ये संदेश है ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। ये फरमाइश आई है गौरव और मानसी अरोड़ा की नई दिल्ली मोतीनगर से। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा की। तेलंगाना निज़ामाबाद से हमारे श्रोता है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। चक चौधा पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क। और ये फरमाइश आई है केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठटई, कमल ठटई, मगनलाल सुमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद आयमा की। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हमारे श्रोता है निसार सलामी, नौशाद, आलिया और आयान बाबू। ये श्रोता है गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, सुनील सुथार, मोहन, भजनलाल मेला, पवन, नरेंद्र सुथार, अमरजीत सुथार। और आप सबकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं और इस गीत के लिए फरमाइश है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार की। गांव खारिया ढाणी से जिला सिरसा हरियाणा से हमारे श्रोता है सतवीर सिंह, बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या। ये फरमाइश है कोली नांदेड़ से नारायण, गायकवाड़ दयानंद, ओमकार साई और आप सबकी पसंद का ये गीत। मुकेश की आवाज़ में एक गीत सुनते हैं धर्म करम फिल्म से। मजरू की शब्द रचना है और धुन आर डी बर्मन की है।

इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद कमसूर, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब। ये फरमाइश आई है कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले सुजाता प्रतीक की। ये फरमाइश है गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से। ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से हमारे श्रोता है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक की। नई बस्ती गंजडूड़ावारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर और विजय लक्ष्मी, राजेश राकेश और ऋषिता। ये फरमाइश है राजकोट से

जैमिन जैन, कृष्णा जैन, हेतल और राकेश जैन की। और इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, नाभा जिला पटियाला पंजाब से हमारे श्रोता है सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमीत कौर और मनु, गांव बनवाला हनवंत फाजलिका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल। ये श्रोता है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। और ये फरमाइश आई है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह और समस राजपूताना परिवार इनका, अलीका तहसील डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत और रानी सोनू रजनी, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र तरड़, कपिल देव और हिमानी जाखड़। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं और इस गीत के लिए फरमाइश है बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की। और ये फरमाइश है अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, हीरत हुजरे और रहमान शेख की। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत हमने लिया है लोफर फिल्म से। गीत के बोल अनंत बख्शी ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने। गांव कमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु और ईवा धारणिया ने। और ये फरमाइश है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। उदयपुर राजस्थान से रमेश, भारती, विनीत, बाबू भाई, चांदीवाला। और ये फरमाइश है आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा की। ये फरमाइश है मोहला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। गांव ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, सोहेल, जुनेद, मुखराम जी, आरिफ खां, ईयान खान, अरशद खान, अरमान खान। और ये हमारे श्रोता हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप और वडिंगखेड़ा पंजाब से मिट्टू टोमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। श्रोताओं, आप सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं। और ये संदेश हमें मिला है मारहारा दरवाज़ा एटा से नबी हसीन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी का। ये श्रोता है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बहरूलाल, वाक्तरिया धाकड़, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। लखुवाली हेड से मास्टर भवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजपाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा।

मुकना राम, और ये हमारे श्रोता है मंडी डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार कुलदीप गांधी। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है सौतन की बेटी, सावन कुमार की बोल है और संगीत वेदपाल का है।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने तहसील भादरा अनूपशहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिर राघव, मुरारी लाल, ममता, मीतू, कीनू, मदन लाल शर्मा, फूसारम मेल, महावीर लोहर, अमित कुमार शर्मा। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया की। ये फरमाइश है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि, रुद्राणी, कृष्णा और चंचल केवट की। ये फरमाइश है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव और दुर्गेश्वरी। ग्राम हिंगडी आलोर जिला रतलाम एमपी से हमारे श्रोता है जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी। ये फरमाइश है रामलाल चंद्रवंशी।

नांदेड, एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव और दुर्गेश्वरी। ग्राम हिंगडी आलोर जिला रतलाम एमपी से हमारे श्रोता है जगदीश धाकर नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह और शिवांगी। ये फरमाइश है रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार की। आखली दीवाना मध्य प्रदेश से। और ये उत्तम नगर दिल्ली से हमारे श्रोता है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरनाज अब्बान अब्बासी। और ये फरमाइश है बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा कुश मूरत की। पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू की। ये फरमाइश है शेरवानी स्कूल गंज डूडावाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी की। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता है चंद्रेश गौहर, वंदना मयंक, तन्वी गौहर और जयपाल यादव। सूरतगढ़ से पवन कुमार लेखराज जी, रवि, सुरजीत कुंदन की। ये बिलाईगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल दिवांगन की। और ये फरमाइश है करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, सोनिया और कालका जी की। ततरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा। और ये फरमाइश है जिला खरनौत सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा की। श्रोताओं अभी आप गीत बाहर कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, उससे पहले ये संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और ये हमारे श्रोता है विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न, रॉबिन सिंह जोशन वैंकूवर से। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल और उर्वशी। लीजिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के लिए फरमाइश आई है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, भाई सूजा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। और ये फरमाइश है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजलिका से रमन वर्मा, अमन, दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा की। गांव चैनपुर तहसील धोरीमना जिला मल्होत्रा से जगदीश भारती, विजय भारती, नरेश भारती, मलिता। और ये फरमाइश है बीड शहर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता है नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। और ये फरमाइश है बड़ा बम चौक खांडवा मध्य प्रदेश से ममता, संजय और किट्टू मार्केंडे की। ये फरमाइश है बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी विश्वजीत। ये श्रोता है मंडी केसरी सिंहपुर से और फरमाइश आई है हमारे पास में एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा की। और ये फरमाइश है चक 10 एसडीपी लाल जटन जिला श्रीगंगानगर से रामेश्वर जी नारेनिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और ब्रजलाल जी। ये फरमाइश है बेधरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव की। ये फरमाइश है बटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, तपेंद्र वरेंद्र, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत की। ये फरमाइश है गुरतेज अलुख 19 घरसाना से। श्रोताओं आप सबकी पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। ग्राम पंचायत बठिना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। चोटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत। और ये फरमाइश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावंकर, निर्मला और विशाल। लीजिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

गुलामी फिल्म से अब ये गीत सुन रहे हैं आप लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, ये श्रोता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और सीतामऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता है दशरथ सेन, रानू सेन, सुनीता कौशल्या, रामगोपाल सेन और हिमांशी, गुरमीत सेन, सांची सेन, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल साहनी, और ये हमारे श्रोता है संगरिया से श्याम मीढ़ा, सुमन मीढ़ा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, और ये श्रोता है हमारे रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहाँपुर से मनमोहन, रजावत राम, मधु रजावत और राशि रक्षित, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु, पवन, शिव कुमार मिस्त्री, और ये हमारे श्रोता हैं पारसमणि गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डेनी, मनीष, सबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत गुरनून, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर और राज सिंह प्रीतमान, और ये हमारे श्रोता है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज मोहम्मद, रिफान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र सिंह शाह। श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की। आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात्रि 9:30 पर। खेल जगत कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। और आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। कुची पलाव में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 12:30 पर। और इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में गायक को चुनिंदा गजलें। और सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेत खलियान का समय रहेगा दोपहर 12:50 पर। और आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती लाभकारी कृषि पद्धति। और चौपाल का समय रहेगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के विषय रहेंगे बेर के बगीचे में सामूहिक कार्य, मुर्गी पालन, चारे वाली फसलों में ज्वार व लोबिया की बुआई, साथ ही मौसम व बाजार भाव की जानकारी भी दी जाएगी। प्रस्तुति सुनील शर्मा की रहेगी। फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर, शाम 7:45 पर और रात्रि 10:30 पर। रात्रि 8 बजे होगा एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। सिराइकी का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर।

महिला जगत कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं आज दोपहर 1:05 पर। और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, अपनापन और प्यार से कैसे जुड़े परिवार, शरीर में आयरन की कमी, लक्षण व निवारण, और मॉनसून स्नैक्स पर भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्यूटी टिप्स पर भी चर्चा होगी और होंगे कुछ चुनिंदा गीत संगीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति मधुलता पुरोहित की रहेगी। युवाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 5:00। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संगीत का महत्व, जनसंचार में रेडियो का महत्व, बाल विवाह मुक्त भारत और अल्पसंख्यकों की मलिन होती बस्तियों में सुधार। साथ ही आज के इतिहास पर भी चर्चा होगी और होंगे कुछ चुनिंदा गीत। तो श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सस्नेह नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, पहला गीत सुनते हैं सड़क फिल्म से। आवाजें अनुराधा पोरवाल और मनहर की है। समीर की शब्द रचनाएं और संगीत नदीम श्रवण का है।

समीर का लिखा गीत सुन रहे हैं आप, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। आवाज़ अनुराधा पोडवाल की है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अब ये गीत सुनते हैं चलते चलते फिल्म से। इस गीत को लिखा है आदेश श्रीवास्तव ने और संगीत पप्पू ढीलन का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गाई कुछ चुनिंदा गजलें।

0: श्रोता अभी सुगम संगीत के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गायी कुछ चुनिंदा गुजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और आज इस कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक खेती लाभकारी कृषि पद्धति।
1: खेत खलियान सुनिए सगले श्रोतावान ने सुनील भाई की ओर से मोकली मोकली राम राम। श्रोताओं आज आपने खेत खलियान में आप बात करा प्राकृतिक खेती के बारे में, जका अपना बडेरा मायत करता और मोकलो फायदो उठानता। प्राकृतिक खेती की बात करा तो आ एक खेती की पद्धति है, जके अंदर की है आप बिना किसी रसायन और बिना किसी कीटनाशक के द्वारा खेती करा। आ खेती की अपने जकी प्रकृति है किसान भाइयों बिंग सागे तालमेल बिठा के करी जावे और माटी की उर्वरा शक्ति ईशु की बनी रहे और अपना जो पर्यावरण है इसमें कोई नुकसान को नहीं पोगे। ई पद्धति ने आप प्राकृतिक खेती कहवा। प्राकृतिक खेती पद्धति में उत्पादन ने स्थिर बनाए रखने सारू उत्पादन लागत ने कम करो जावे, वो मुख्य उद्देश्य हुए कि अपना जका किसान भाई है बांगी लागत कम करके एर मुनाफो बढ़ाया जावे। क्योंकि रासायनिक खेती आप जी करा तो बिम की आजकल खाद बीज जका है बहुत ही महंगा वे जका आप पोसावा को नहीं तो और अपना जो लागत है वह भी बढ़ जाए। तो प्राकृतिक खेती जो आप अपनावगा तो अपने जकी खेती की लागत है वह कम होगी और अपना जो मुनाफो है वो बढ़ेगा और सागा सागा अपनों उत्पादन भी बढ़ेगा और भी उत्पादन की जकी गुणवत्ता है वह भी बहुत बढ़िया होगी। ई खेती में जो अपना मुख्य घटक है किसान भाइयों वो है अपनी देसी जकी गऊ है वह है, और आ खेती पूरी तरह देसी गऊ के ऊपर आधारित है। क्योंकि जका इमें आप आदान प्रयोग में लिया बे की है देसी गाय को जो गोबर है मूत्र है ईशू तैयार करा जावे। ई पद्धति में पौधा या फसल के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान कौन दियो जावे, ध्यान दियो जावे सिर्फ जकी अपनी माटी है विंग स्वास्थ्य पर। क्योंकि अपनी जो खेत की माटी बढ़िया होगी पूरी उपजाऊ होगी तो भी मैं जका पनपन वाली जकी फसल है पौधा है व्यापी आपकी अस्वस्थ होगा। गो आधारित जकी मरदा है इंग अंदर की किसान भाइयों केंचवा की जकी संख्या है वह बहुत ज़्यादा हुए और जका सूक्ष्म जीवाणु है वे भी बढ़ जाए। देसी गाय का जो एक ग्राम गोबर है बिंग अंदर के 300 करोड़ से ज़्यादा लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाया जावे।

इन देसी गाय के गोबर और मूत्र में प्राकृतिक आदान तैयार करिया जावे। ये सूक्ष्म जीवाणु की है वायुमंडल से जिकी नाइट्रोजन है किसान भाइयों ये भूमि ने प्रदान करे और सागे सागे जका भूमि के अंदर अन उपलब्ध पोषक तत्व बेकार पड़ा रहे बने सक्रिय कर दिए और वे पौधा आप ही आपकी है ग्रहण करने लग जाए। तो इनका जी उद्देश्य की बात करा तो उद्देश्य वो ये पहलो तो है देखो अपनो किसान है इनकी आय में वृद्धि करनो इनकी आय कद बढ़ेगी जब इनकी जो कि लागत है खेती पर बा घट जाएगी क्योंकि आजकल खेती पर लागत बहुत ज़्यादा आन लाग रही है और बिंग कारण बिंगी की आमदनी बढ़न कौन लाग रही। दूसरो इंगो उद्देश्य है किसान भाइयों भी माटी जकी है इंगी उर्वरता और जल दान की क्षमता बढ़ानगी। जब अपनी माटी उर्वरक पूरी उर्वरक होगी तो बाकी अच्छो उत्पादन देवेगी और लंबे टाइम ते उत्पादन देवेगी और सग सग जिया पानी है बा धारण करने की क्षमता बढ़ानी है क्योंकि कई बार कि आप पानी मोकलो देवा तो अपनी जो कि माटी सी हुए बा पानी ने राख कौन सके लंबे टाइम ते नमी राख कौन सके और पानी के उड़ जाए तो अपनी फसल सोको बनाने लग जाए। तो वो भी इंगो मुख्य उद्देश्य है कि जल धारण की क्षमता बढ़ानो और सग सग की है स्वास्थ्य वर्धक रसायन मुक्त खाद्यान्न तैयार करनो प्राकृतिक खेती को मुख्य उद्देश्य है। आप आजकल देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई की रासायनिक जका उर्वरक है या रासायनिक जका आदान दूसरा आन लाग रहा वे प्रयोग में लेवे बीसों की जो कि आपने जो कि खाद्यान्न है बिंग अंदर की है इनको प्रभाव उड़ जाए और वो अपने शरीर में पुगे तो बीसों अपना जो कि स्वास्थ्य है आपनों स्वास्थ्य है वो भी खराब हुए और जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम है अन्य कम करना भी इनको उद्देश्य है। इनका जिया मुख्य घटक है आगे आप बात करा तो पहलो घटक इनको जीवामृत जो गाग गोबर मूत्र और जो किया गुड़ है बेसन है माटी और पानी से तैयार करो जावे और वो जो है माटी की जो कि उर्वरा शक्ति है वो बढ़ाने को काम करे। दूसरो इनको मुख्य घटक है किसान भाइयों जीवामृत जो गाय का गोबर मूत्र चूने और कली जकी आवे बीज तैयार करो जावे और वो की है बीज उपचार के काम आवे इस आप बीज उपचार करा। और तीसरो इनको घटक है आच्छादन यानी जमीन ने की है कचरे से ढकनो ताकि बिंगी माटी की नमी है जकी बा लंबे टाइम तक बनी रहे। और पाँचों इनको मुख्य घटक है जो कि अपनी देसी गऊ माता है जो कि भारतीय नस्ल की देसी गाय है इंगे गोबर और मूत्र शू जका उत्पाद तैयार किया जावे। तो इंगे आप मुख्य लाभ की बात करा तो पहलो लाभ तो वही है कि आपनो जको किसान है इंगी खेती पर जकी लागत आन लाग रही है बिन कम करनो क्योंकि जका रासायनिक खाद है कीटनाशक है आंगी के जो कि पीछा बहुत ज़्यादा लगे यहाँ पर खर्चो ज़्यादा आवे तो अपने की खेती को जो को बजट है बुढ़ावा डाल हो जाए तो इन्हें कम करना भी इनको मुख्य उद्देश्य है। दूसरो इनको उद्देश्य है भी बेहतर उत्पादन प्राप्त करनो गुणवत्ता जो को उत्पादन है आजकल क्या होड़ा लाग रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेवा और वो चाहे उत्पादन कोई काम को हुए चाहे न हुए पर मात्रा पर ज़्यादा किसान भाई की ध्यान देने लाग रहा है। तो इनकी बजाय आप जो गुणवत्ता पर ध्यान देवांगा तो बिंगो आपन की है मान भाव ज़्यादा मिलेगा और सागे सागा अपनो स्वास्थ्य है माटी को स्वास्थ्य है आपनो स्वास्थ्य वो भी बढ़िया बने रहेगो तो वो भी आपने एक बहुत ही बढ़िया लाभ है जो आप प्राकृतिक खेती इस्तेमाल करा। दूसरो अपना लाभ वो है कि जो अपनो पर्यावरण है इनकी सुरक्षा हुआ क्योंकि प्राकृतिक खेती में जलवायु और भूमि प्रदूषण बहुत कम हुए और सागे ही जगह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है बा कम हुए और सागे सागे पाकि जगह रासायनिक जगह खाद है बीज रसायन है दूसरा जगह कीटनाशक है मांगो जो प्रयोग कम करांगा तो आपने जो पर्यावरण है इनके अंदर की है जगह जहरीला गैसा निकले और निकले बेकम फैलेगी और अपना पर्यावरण सुरक्षित रहेगो। और इन जी फायदा की बात करा तो आपनों जो स्वास्थ्य है और समाज खातर भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस की फसल

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सहकारिता मंत्रालय का पांचवा स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन और टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरूआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध पूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 साल से सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश को सहकार से समृद्धि का मंत्र मिला, जिसने गांवों, गरीबों, किसानों और मजदूरों को उन्नत बनाया।
1: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
0: गौरतलब है कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और इन देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक

0: भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ. मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान है, जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली रोगियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से रोगी अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क का विस्तार करके देश के रोगियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईटी यूजी 2026 की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक के लिए बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस साल 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मधुलता पुरोहित और अगले कुछ समय तक हम साथ मिलकर बात करेंगे महिलाओं से जुड़े ऐसे विषयों की जो हमारे जीवन को और भी सुंदर, स्वस्थ और प्रेरणादायक बनाते हैं। इस सफर में होंगी दिल से दिल की बातें, कुछ उपयोगी जानकारियां और साथ ही होंगे आपके मन को छू लेने वाले गीत भी। तो आइए अपने दिन की भाग दौड़ को थोड़ा विराम दीजिए, मुस्कुराइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। शुरुआत करते हैं आज के पहले सुरीले गीत के साथ।

कहते हैं कि धागे में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो वो वापस वैसा प्लेन कभी नहीं हो सकता जैसा वो पहले था। वैसे ही हमारे रिश्ते रूपी धागों में भी होता है, जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर उनसे कुछ अनबन हो जाए, कुछ नाराज़गी हो जाए। लेकिन क्या हुआ अगर धागे में गांठ पड़ गई? जुड़ा तो रहता है। वैसे मेरा मानना है कि धागे का टुकड़ों में बंटा होने से अच्छा है वो जुड़ा रहे। क्या हुआ जो गांठ आ गई, जुड़े तो है ना एक दूसरे से। वैसे एक बात आपने नोट की कभी कि धागे में जब गांठ लग जाती है तो वो छोटा हो जाता है, उसकी लंबाई कम हो जाती है, यानी दूरियां कम हो जाती हैं और वो और भी पास आ जाते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं और स्पीड ब्रेकर आता है तो हम गाड़ी को रोकते नहीं हैं, उसकी स्पीड कम करते हैं, ब्रेकर को पार करते हैं और वापस रफ्तार को बढ़ा लेते हैं। तो अगर कुछ शिकायतें हो भी जाएं तो बस कुछ समय की बात होती है, खुशियों का रंग एक बार फिर चटक होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि रिश्तों को ऐसे रंग में रंग के रखिए जहां शिकायतें इतनी लंबी ना हो जाएं कि रिश्तों का रंग फीका पड़ने लग जाए, क्योंकि रिश्ते तो चटक रंग में रंगे हुए ही अच्छे लगते हैं और

सखियों, गीत से पहले बात हो रही थी अपने रिश्तों की, प्यार की और अपनेपन की। तो ये जो प्यार और अपनापन है, वो सिर्फ हमारे शब्दों से ही नहीं, हमारे व्यवहार से भी जाहिर होना चाहिए। जहाँ प्यार और अपनापन होता है, वहीं खुशियाँ भी होती हैं और सुकून भी। और बहनों, तनाव और चिंता तो वहाँ आसपास भी नहीं आती हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ जहाँ होता है, वहाँ खुशियाँ और गम सब बांट लिए जाते हैं। और आप तो जानती हैं कि खुशियाँ अगर बांट ली जाएं तो दोगुनी हो जाती हैं, और गम अगर बांट लिया जाए तो आधा रह जाता है। कभी कोई मुश्किल आ भी जाए तो अपनों का साथ संभल देता है, और वो मुश्किल भी पार हो ही जाती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में या परिवार में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की बात सुनना और उन्हें समझना, कठिन समय में साथ देना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिश्ते एक कच्ची डोरी से बंधे होते हैं, इन्हें अगर जोर से खींचा जाए तो टूट भी सकते हैं, लेकिन प्यार

और सखियों, गीत के बाद अब बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य में भी कि शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है, यानी एनीमिया क्यों हो जाता है, इसके कारण, लक्षण और निवारण सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एनीमिया या खून की कमी तब होती है जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए। और बहनों, हीमोग्लोबिन हमारे खून का वो हिस्सा है जो शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हमारे शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और हमें हर वक्त थकावट और कमजोरी महसूस होगी। सबसे कॉमन तरह का जो एनीमिया है वो आयरन की कमी के कारण होता है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, इसलिए अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम ही रहेगी और हमें एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी। अब आयरन की कमी क्यों होती है ये भी जानते हैं। तो जब लंबे समय तक हमारे भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की अगर कमी रहती है तो एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन कम हो जाता है शरीर में। इसके अलावा भी और भी कारण होते हैं, जानेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, बात हम कर रहे थे एनीमिया और उसके कारणों की, और पहला कारण हमने जाना आयरन की कमी। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, और विशेष तौर पर महिलाओं में एनीमिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो उनमें बहुत सारी वजह होती है जिनकी वजह से खून की कमी हो जाती है। इनमें एक वजह ये भी है कि अगर शरीर में किसी तरह की इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, अंदरूनी अगर ब्लीडिंग हो जाए और पता ना लगे हमें, तो खून की कमी हो जाती है। एक और वजह है जो कि बहुत ही कॉमन आजकल देखने को मिलती है, बच्चेदानी में गांठ की समस्या। उससे भी हैवी ब्लीडिंग होती है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा बहनों, पीरियड्स में अनियमितता भी इसका एक बड़ा और कॉमन रीज़न है। और बहनों, प्रेगनेंसी में एनीमिया एक बहुत ही साधारण सी बात है और लगभग सभी महिलाओं को होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो आयरन और ब्लड की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, इसलिए खून की कमी की समस्या का सामना कई बार करना पड़ता है। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जब शरीर में खून कम हो जाए या HB की मात्रा कम हो जाए तो हमें कैसा महसूस होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि शरीर में खून की कमी है? इसमें सिर दर्द हो सकता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, यानी थोड़ा पीलापन आ जाता है चेहरे के रंग में। इसके अलावा दिल की जो धड़कने हैं वो तेज़ रहने लगती हैं और हर वक्त कमज़ोरी या थकावट महसूस होती है। इसके अलावा सांस फूलना और कई बार बाल झड़ना जैसी समस्या भी हमारे सामने आती है। बहनों, अब बात इसके उपचार की भी कर लेते हैं।

हैं तो उपचार में सबसे पहले हम बात करते हैं खान पान की। तो हरी सब्जियों का प्रयोग हमें ज़्यादा करना है, हरी पत्तेदार सब्जियों का विशेष तौर पर, क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। और बहनों, हरी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां हमारे आसपास बड़ी ही आसानी से उपलब्ध होती हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी होती हैं, क्योंकि सस्ती मिलती हैं और बाज़ार में भी आसानी से मिलती हैं। और अगर आप चाहें तो घर पे भी आप गमले में भी उगा सकती हैं, अगर आपके पास बहुत सारी जगह नहीं है तो, जैसे पालक हुई, मेथी हुई या बथुआ, हरा धनिया। इसके अलावा ब्रोकली भी खून की मात्रा शरीर में बढ़ाने में बहुत सहायक होती है, तो ब्रोकली का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इसके अलावा छोले, राजमा या बीन्स भी आप ज़रूर खाइए, क्योंकि इनमें भी जो आयरन की मात्रा है वो काफ़ी होती है। अनार और चुकंदर भी खून को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब ये हुई खान पान की बात। इसके अलावा हम दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आयरन टेबलेट्स आप ले सकती हैं, वो सिरप भी देते हैं कई बार, और कई बार परिस्थिति के हिसाब से इंजेक्शन भी वो देते हैं हमें। और बहनों, शरीर में आयरन का अवशोषण ज़्यादा तब होता है अगर हमारे ब्लड में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त हो। तो जब आप आयरन की टेबलेट्स ले रही हैं या आयरन युक्त भोजन ले रही हैं, तो आप नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल हैं उनका रस भी ले सकती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये शरीर में खून को बढ़ाने में सहायक होती हैं। उम्मीद है बहनों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इन बातों को ध्यान में रखेंगी। और अपने आसपास की जो महिलाएं हैं जिनमें आप देख रही हैं कि आपको लगता है कि इनमें खून की कमी हो सकती है, तो उन्हें भी आप बताएंगी और उन्हें जागरूक करेंगी। अब आइए अगला गीत सुनवाते हैं आपको।

बहनों, बारिश का मौसम अभी आने वाला है, बरसात शुरू होने वाली है, और ऐसे मौसम में मन करता है कुछ बढ़िया, अच्छा और चटपटा खाने का, और हम अक्सर पकौड़ों की डिमांड करते हैं या हम खुद बना के खाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी रेसिपीज जो आपका दिल पक्का जीत लेंगी। इसमें हम बनाएंगे मखाना चाट। तो आप कागज़ और पेन लेके तैयार रहिए रेसिपी नोट करने के लिए। इतनी देर में मैं आपको सुनवाती हूँ एक और प्यारा सा गाना।

तो आइए बनाते हैं मखाना चाट। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए ये जान लेते हैं। मखाना चाहिए 2 कप, थोड़ा सा घी, 2 आलू उबले हुए, 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले कढ़ाई में घी गर्म करना है और उसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे। उसके बाद मखाना को क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। अब साथ ही नमक और लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब गैस से उतार लेंगे और उसमें कटे हुए उबले आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया ये सब डाल देंगे और साथ ही चाट मसाला और नींबू का रस भी मिला देंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से नायलॉन सेव जो बिल्कुल बारीक आती हैं वो भी डाल सकती हैं और हाथों हाथ सर्व करें, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। बहनों एक और रेसिपी भी है आपके लिए, लेकिन वो बताएंगे इस गीत के बाद।

बहनों, गीत से पहले हमने बनाई थी मखाना चाट और अब बनाते हैं गवार फली के पकोड़े। जी हाँ, आपने पहली बार सुना होगा लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि इस मौसम में गवार फली बहुत मिल रही है और बहुत ही ये गुणकारी सब्ज़ी होती है। हम सब्ज़ी बना के अक्सर इसकी खाते हैं लेकिन कई बार बच्चे

गीत से पहले हमने बनाई थी मखाना चाट, और अब बनाते हैं गवार फली के पकोड़े। जी हाँ, आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस मौसम में गवार फली बहुत मिल रही है और बहुत ही ये गुणकारी सब्जी होती है। हम सब्जी बना के अक्सर इसकी खाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इसमें नानुकर करते हैं, वो पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप ये रेसिपी बनाएंगी तो उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगी, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम गवार फली देसी वाली। अब उसको धोकर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और उसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसको पोंछ लेंगे, निकाल देंगे। अब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये साफ़ हो जाएंगी, और दूसरा जब इसको हम तेल में डालेंगे तो ये अचानक से फटेगी नहीं, तो तेल नहीं उछलेगा, तो वो डर कम हो जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया, उसको साफ़ भी कर लिया। अब इसके बाद किसी बड़े बोल में उसको डाल लेंगे, उसमें हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ ही डालेंगे चाट मसाला और एक किचन किंग मसाला जो आता है वो भी आप इसमें डाल सकती हैं, उससे भी स्वाद बहुत बढ़ जाता है। नमक तो डालना ही है स्वादानुसार, और उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमें ज़रूर डालना है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हाथ से अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है सब कुछ। उसमें नींबू का रस भी डाल देना है, इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। अब सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें 1/4 कप बेसन और 3 टेबलस्पून चावल का आटा भी हम डालेंगे। इसके बाद थोड़े से पानी से हम उसमें छींटे लगा के मिक्स कर देंगे। पानी थोड़ा इसलिए डालना है ताकि सारी सामग्री फलियों पर चिपकी रह जाए, वो अलग ना हो जाए। ज़्यादा गीली अगर हो गई तो वो फलियों को छोड़ देगी, इसलिए थोड़ा सा पानी छिड़क के उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद तेल को गर्म करेंगे कढ़ाई में और डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, आप एयर फ्रायर में भी इसे बना सकती हैं, या अवन की ट्रे में फैलाकर बेक भी कर सकती हैं। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से ये स्वादिष्ट गवार फली के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। आइए अब एक खूबसूरत गीत और सुन लेते हैं।

मेरे बारिश की फुहारें मन को जितना सुकून देती हैं, उतनी ही चुनौतियाँ हमारी त्वचा और बालों के लिए भी लेकर आती हैं। इस मौसम में नमी अधिक होने के कारण त्वचा चिपचिपी हो सकती है, मुहांसों की समस्या भी बढ़ सकती है और हमारे बाल बेजान या फ्रिजी हो सकते हैं। इसलिए आज हम बात करते हैं मानसून में जो आसान और असरदार हो सकते हैं उन ब्यूटी टिप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की। दिन में 2 बार अपने चेहरे को हल्के फेस वॉश से साफ करें, इससे अतिरिक्त तेल और गंदगी हट जाती है। इसके बाद चेहरा धोने के बाद हल्का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन त्वचा को नमी की ज़रूरत हर मौसम में रहती है। और दूसरी बात है सनस्क्रीन। बादल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धूप का असर नहीं होगा, तो घर से जब भी बाहर निकलें सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अगर बात बालों की करें तो बारिश में अगर बाल भीग जाएं तो घर आकर उन्हें साफ़ पानी से धो लें और अच्छी तरह से सुखाएं, क्योंकि लंबे समय तक बाल गीले रखने से रूसी और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो सप्ताह में 2-3 बार बाल धोएं और उन्हें कंडीशनिंग भी करें उनकी। अगर मेकअप करते हैं तो कम और हल्का मेकअप चुनें। वाटरप्रूफ काजल, मस्कारा और हल्का कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करें तो मेकअप फैलेगा नहीं। ऐसे ही हमें अपने हाथों और पैरों की भी देखभाल करनी है। उनको भी बारिश के मौसम में साफ और सूखा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर गीले हो जाएं जूते तो मोजे, तो उन्हें घर पे आके उतार लें और अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें। और बहनों, खूबसूरती केवल बाहर से नहीं अंदर से भी आती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, मौसमी फल और हरी सब्जियाँ खाएँ, तला भुना भोजन कम करें और अच्छी नींद लें।

0: बहनों, मर्जी तो नहीं है बिल्कुल आपसे विदा लेने की, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो अब तो आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। तो दीजिए मुझे यानी मधुलता पुरोहित को इजाजत। नमस्कार।
1: तेरे आने की खबर।

0: knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovich Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2-7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह

0: संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: जगन्नाथ तकानेन।
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के

0: सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ तकानेन।
2: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
2: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना

0: फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत सुनते हैं रेडी फिल्म से। आवाजें तुलसी कुमार और केके की है। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

टू स्टेट फिल्म से अब ये गीत सुन रहे हैं आप, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना अमिता भट्टाचार्य की है और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

सिंघम फिल्म से अब ये गीत सुन रहे हैं आप, श्रेया घोषाल और अजय की मिलीजुली आवाज़ों में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है अजय अतुल ने।

लीजिए अब सुनते हैं दे दनादन फिल्म से ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत प्रीतम का है।

लीजिए अब सुनते हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म से ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत प्रीतम का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आधा भर से है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है। तमाम सुनने वालों का खैर मकदम है।

नजर डालेंगे आज की मजलिस के प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद और 3:30 पर कहकशां प्रोग्राम के तहत आज आप सुन सकेंगे गदर फिल्म की कहानी और नगमे। 4 बजे से आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ उठा सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम 4:50 तक सुना जा सकेगा। शाम के 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी मुल्क की खिदमत और कौमी इत्तेहाद के लिए खुद को वक्फ करने की एक बाइसे तहरीक मिसाल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नज़रिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुराज़ मेमार थे, जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ़ुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज़्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफ़र में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिंसों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है, जो लोगों को एक वसीतर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है, ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का अहाता किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूहानी पेशवा दलाई लामा को उनकी 91वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि अमन हम आहंगी का उनका पैगाम दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिशल रहा है। वजीर आजम ने कहा कि दलाई लामा की अखलाकी और रूहानी कुव्वत और सभी की बहबूद के तई उनका अहद काबिल तारीफ है। जनाब मोदी ने दलाई लामा की तवील उम्री और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआ भी की। यूक्रेन में आज सुबह राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की में नेटो की अहम सरबराह मीटिंग से एक दिन कबल यह हमला किया गया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। यह हमला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से इस बारे में खबरदार किए जाने के बाद हुआ है कि इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पुरी में आलमी सतह पर मकबूल रथ यात्रा के लिए वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में ओडिशा हुकूमत अपनी इंतजामी तैयारी के आखिरी मरहले में है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने आज रथ यात्रा तालमेल कमेटी के साथ हतमी मीटिंग की सदारत की और सालाना यात्रा के लिए पुख्ता इंतजामात को यकीनी बनाने की खातिर सभी महकमों को हिदायत जारी की। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 3 रोज के दौरान शिमाली बुरा अरब, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बकिया हिस्सों, राजस्थान के कुछ और हिस्सों की जानिब आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। हमारे नुमानिगार ने खबर दी है कि अक़वामे मुत्तहदा के तजारत और तरक्की से मुतालिक इदारे की जानिब से यह इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मेक्सिको को स्टेडियम में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका आलमी नंबर 1 अरियाना सबलिंका को 6-2, 7-6

0: 7-6 से हरा कर पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहरुल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से रबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

सपना अवस्थी और साथियों की आवाजों में ये नगमा आपने दुश्मनी फिल्म से सुना। अब सुनिए उदित नारायण और साथियों को, फिल्म है हम तुम्हारे हैं सनम।

अलका याग्निक और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी जुबैदा। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम कहकशां।

फिल्म गदर के प्रोड्यूसर हैं नितिन केनी, डायरेक्टर अनिल शर्मा, गीत आनंद बख्शी, म्यूजिक है उत्तम सिंह का, हीरो सनी देओल, हीरोइन अमीषा पटेल। ये कहानी है हिंदुस्तान की तारीख में यादगार बन चुके दिन 2 जून 1947 की, जब वायसराय हाउस में हिंदुस्तान के दो हिस्सों में तकसीम किए जाने का ऐलान किया गया था। इसके एक हिस्से को हिंदुस्तान नाम दिया गया और दूसरे हिस्से को पाकिस्तान। इस बंटवारे ने पूरे मुल्क में गदर मचा दिया था। खौफ और दहशतगर्दी के उस माहौल में लाखों हिंदुओं और मुसलमानों को अपना घर बार और कारोबार छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। ऐसे ही खौफनाक माहौल में मजबूर होकर हिंदुस्तान में रह रहे अशरफ अली खान को भी मुल्क छोड़ना पड़ता है। जब दहशतगर्द उनकी हवेली को आग लगा देते हैं तो अशरफ अली खान अपनी बीवी और बेटी

सकीना यानी अमीषा पटेल को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। बदहवास अशरफ जैसे तैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। अफरा तफरी के माहौल में अशरफ अली और उनकी बीवी तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मगर भीड़ की वजह से सकीना स्टेशन पर ही रह जाती है। सकीना घबरा कर जब ट्रेन की तरफ भागती है तो वो जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर जब वो नल के नीचे बैठकर नहाने लगती है तो कुछ मनचले शोहदे जवान खूबसूरत सकीना को देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। सकीना घबरा कर वहां से भागने लगती है, तभी एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह यानी सनी देओल सकीना को उन दरिंदों से बचाता है। इस गदर में इस ट्रक ड्राइवर के खानदान के लोग भी मारे गए थे। तारा सिंह सकीना के कॉलेज की कैंटीन के लिए सामान लाने का काम करता था। सकीना को उन दरिंदों से बचाते वक्त तारा सिंह की नजर एकाएक सकीना के हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास में बंद ताजमहल पर पड़ती है, तो तारा उसे देखते ही गदर से पहले की माजी की यादों में खो जाता है। ये वही तोहफा था जो तारा सिंह ने सकीना को कभी कॉलेज में दिया था। माजी की यादों में खोते हुए तारा सिंह को वो मंजर याद आता है जब सकीना के कॉलेज का सालाना जलसा था। गाने का बेहद शौकीन तारा सिंह भी इस फंक्शन में गाना चाहता था, मगर लड़कियां मजाक में तारा सिंह से कहती हैं कि इसके लिए तो उसे उनकी म्यूजिक टीचर से पूछना पड़ेगा। वो तारा से कहती हैं कि उनकी म्यूजिक टीचर थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, इसलिए वो जरा जोर से बोले। लड़कियां सकीना यानी अमीषा पटेल को ही चश्मा वगैरह लगाकर बतौर म्यूजिक टीचर तारा से बात करने को कहती है, तो सकीना तारा से मजाहिया अंदाज में बात करती है और उसे गाना सुनाने को कहती है।

सिंह का गाना सुनकर सकीना बहुत खुश होती है और उसे अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। वो कॉलेज फंक्शन में प्रिंसिपल की इजाजत

तारा सिंह का गाना सुनकर कॉलेज के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तारा सकीना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे स्टेज पर गाने का मौका दिया। इसी बात से खुश होकर तारा सिंह अगले दिन सकीना को कांच के गिलास में बंद ताजमहल का एक खूबसूरत तोहफा देता है और वही तोहफा अब इस गदर के हालात की मारी सकीना के हाथ में था। तारा माजी की यादों से बाहर आता है और डरी सहमी सी सकीना को नजर भर कर देखता है। वो उसे अपने घर ले आता है मगर सकीना के मुसलमान होने की वजह से दहशतगर्द तारा के घर उसे मारने आते हैं, तो वो बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करके सकीना की हिफाजत करता है और सकीना को बचाने के लिए उसकी मांग अपने खून से भर देता है और दंगाइयों से कह देता है कि अब सकीना सिखनी हो गई है। ये देखकर दंगाई वहां से चले जाते हैं। इस तरह तारा सिंह सकीना को कई बार दंगाइयों के कहर से बचाता है।

तो सकीना के दिल में भी तारा सिंह के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। सकीना को जब अपने बिछड़े माँ बाप की याद आती है तो वो रोने लगती है। तारा उसे तसल्ली देता है। इसी बीच तारा सिंह की ताई जब तारा के घर सकीना को देखने आती है तो वो तारा सिंह से उसे मुसलमानों के मोहल्ले में छोड़ आने को कहती है, मगर तारा सिंह ऐसा नहीं करता। तभी दंगाई फिर दहशत फैलाते हैं तो सकीना डर जाती है। सकीना को दुखी देखकर तारा सिंह उसे उसके अब्बू अम्मी के पास लाहौर छोड़ जाने की बात कहता है। तारा उसे कहता है कि लाहौर जाने पर उसे उसकी याद तो आएगी ना। तारा की बात सुनकर सकीना जज्बाती हो जाती है। उसके दिल में अब तारा की मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। वो तारा सिंह से शादी करने को कहती है और अब वो लाहौर जाने से भी मना कर देती है। तारा सिंह सकीना से शादी कर लेता है। इस खुशी के मौके पर तारा सिंह के यार दोस्त नाचने गाने लगते हैं।

शादी के बाद सकीना एक बच्चे की मां बनती है। दोनों अपने बेटे का नाम चरणजीत रखते हैं। सकीना तारा सिंह और अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। तभी एक वाकया घटता है। सकीना एक दिन अखबार में अपने अब्बू का फोटो देखती है, जो अब पाकिस्तान के मेयर बन चुके हैं। अपने अब्बू अम्मी के जिंदा होने की खबर से सकीना बहुत खुश हो जाती है। तारा सिंह अशरफ अली खान का फोन नंबर मालूम करके सकीना को देता है। सकीना फोन पर उन्हें अपनी शादी और बच्चे की बात बताती है। अशरफ अली खान सकीना को लाहौर बुलाना चाहते हैं। वहां जाने के लिए सकीना और तारा सिंह का पासपोर्ट और वीजा बनवा दिया जाता है।

तभी तारा का दोस्त गुल्लू बताता है कि चरणजीत के पासपोर्ट पर साहब के दस्तखत होने हैं और साहब 3 दिन बाद आएंगे। तारा सकीना से कहता है कि वो 3 दिन बाद बेटे को लेकर पाकिस्तान आ जाएगा। वो सकीना को अकेले ही हवाई जहाज में बैठा देता है, मगर भोला भाला तारा इस बात से एकदम अनजान था कि ये सब किसी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि तारा सिंह से सकीना को दूर किया जा सके। इधर लाहौर आने पर सकीना अपने अम्मी अब्बू से मिलकर बहुत खुश होती हैं। अशरफ अली खान को अब हिंदुस्तान और वहां के बाशिंदों से नफरत हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि तारा सिंह सकीना से मिल पाए। वो सकीना की शादी अपने दोस्त सरफराज के बेटे सलीम से करना चाहते हैं। जब सकीना को ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि वो तारा को कभी नहीं भूल सकती, वो उसका शौहर है, उसके बच्चे का बाप है। वो कहती है कि तारा जैसा इंसान तो पूरी कायनात में नहीं है, वो उसे लेने जरूर आएगा। इसी बीच ईद का त्योहार आता है तो सब खुशी में गाते हैं।

कहती है कि तारा जैसा इंसान तो पूरी कायनात में नहीं है, वो उसे लेने जरूर आएगा। इसी बीच ईद का त्योहार आता है तो सब खुशी में गाते हैं।

सकीना तारा सिंह के बिना बहुत बेचैन है। उसकी जुदाई में वो बहुत तड़पती है, इसलिए वो अब वहां से जाना चाहती है। मगर उसके अम्मी अबू उसे अपने खानदान की इज्जत का हवाला देते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मगर सकीना न तो दूसरी शादी करना चाहती है और न ही पाकिस्तान में रहना चाहती है। उसकी जिद देखते हुए उसके अब्बू तारा सिंह का वीजा रुकवा देते हैं। मगर तारा सिंह कहता है कि कोई भी ताकत उसे सकीना के पास जाने से नहीं रोक सकती। इधर तारा और उधर सकीना दोनों परेशान हैं।

उपहार दो, धागा हो तो काट दो।

सकीना के अब्बू जब उसकी शादी जबरदस्ती सलीम से करने की कोशिश करते हैं, तो सकीना काजी के सामने निकाह से इनकार कर देती है। उधर तारा सिंह अपने दोस्त गुल्लू की मदद से जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंचता है। लाहौर जाकर जब वो सकीना से मिलता है, तो सरफराज उससे सकीना को छोड़ देने को कहता है, मगर तारा सिंह के इनकार करने पर सरफराज के आदमी तारा सिंह पर हमला कर देते हैं। अशरफ अली खान भी तारा सिंह को जान से मारने की धमकी देते हैं, मगर तारा सिंह कहता है कि वो गदर का एक वक्ती जुनून था, मैं उस नफरत को भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। अशरफ अली तारा सिंह को बिना वीजा के पाकिस्तान आने के इल्जाम में जेल में सराने की धमकी देते हैं, मगर कहते हैं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तारा सिंह से इस्लाम कबूल करने और पाकिस्तान में ही रहने की शर्त रखते हैं और उसे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का वक्त देते हैं। सकीना से बेपनाह मोहब्बत करने वाला तारा सिंह उनकी सभी शर्तें मान लेता है, मगर जब उसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहा जाता है तो वो मना कर देता है। ये सुनकर अशरफ अली खान के आदमी उस पर फिर से हमला करते हैं, मगर मौका देखकर तारा सिंह सकीना और बेटे चरणजीत को लेकर वहां से भाग जाता है। अशरफ अली खान के आदमी तारा सिंह और सकीना को ढूंढते हुए उनका पीछा करते हैं। अशरफ अली खान अपने मातहतों को हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए जाएं, ताकि तारा सिंह सकीना और बच्चे को लेकर न जाने पाए। उधर सलीम और उसके साथी भी तारा सिंह को ढूंढ रहे थे।

आखिर में जिस ट्रेन में तारा सिंह और सकीना जा रहे हैं उसी में आग लगा दी जाती है। सलीम कहता है कि सकीना अगर मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। अशरफ अली खान तारा को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से गोली चलाता है तो वो गोली सकीना को लग जाती है। ये देखकर तारा सिंह आग बबूला होकर अशरफ अली खान को बहुत मारता है। सकीना गोली लगने से बेहोश हो जाती है तो तारा सिंह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बेटी को जख्मी देखकर अशरफ अली खान को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। वो सकीना के होश में आने पर उससे माफी मांगता है और सकीना और तारा सिंह की बेपनाह मोहब्बत देखकर अपनी हार मान लेता है। तारा सिंह और सकीना हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।

कहकशां प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे गदर फिल्म की कहानी और नगमे। कहानी को तरतीब दिया था राज हेमानी ने और रावी थी सूरजा साहिब। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात दस्तियाब हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये नगमा था आईना फिल्म से। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अमित कुमार, अलका याग्निक और मनहर को सुनिए। फिल्म है खून का कर्ज।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नज़र कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। सुनिए फिल्म है बेटा।

पाल और मंगल सिंह की आवाज़ों में ये नामा अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी बाहर आने तक। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर है एलिशा चिनॉय की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ।

0: मनहर उदास कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में ये नगमा सौदागर फिल्म से था। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: यह आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से आज़ाद और खुले भारत बहरुल खित्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। ईरान के शहर तेहरान में साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे में कसीर तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और

0: क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ये हमला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की की जानिब से इस बारे में खबरदार किए जाने के बाद हुआ है कि इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हुकूमत ने कहा कि 93 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों, आभा से 104 करोड़ से ज़्यादा सेहतमंद से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफ़र में ये एक पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिस्सों पर मबनी एक मुनफरद शराफ्ती नंबर है जो लोगों को एक वसी तर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमत तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों, दीगर खिदमत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसअत देना है ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमत का अहाता किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें योम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदादी बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज़्यादा इमदाद बाहमी इदारों से वाबस्ता 30 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकती निज़ाम बनाने की सख्त काबिल तारीफ काम हुआ है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस साल सरकार ने इमदाद बाहमी इदारों के लिए दर्जाबंदी से मुतालिक एक फ्रेमवर्क का आगाज किया है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय का जज्बा पैदा करने, भारत माता की तज़ीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों भारतीय सकाफत की अहमियत के तीन वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आइन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। पूरी में आलमी सतह पर मकबूल रथ यात्रा के लिए वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में उड़ीसा हुकूमत अपनी इंतजामी तैयारी के आखिरी मरहले में है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने आज रथ यात्रा तालमेल कमेटी के साथ हतमी मीटिंग की सदारत की और इस सालाना यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम को यकीनी बनाने की खातिर सभी महकमों को हिदायत जारी की। वेनेजुएला में जो 2 जल्जले आए थे उनमें मरने वालों की तादाद 3,342 तक जा पहुँचे, जख्मियों की तादाद 16,740 हो गई और बेघर अफराद की तादाद बढ़कर 17,000 हो गई है। मैक्सिको सिटी में अस्टिका स्टेडियम में इंग्लैंड मैक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल पहुंच गए। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मैक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और उसके खिलाड़ी रोमन सुफियुलिन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में अब उनका मुकाबला फिलिक्स ऑगिस एसिलाइन या अलेजेंड्रो डिविकिंग फोकिना से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से आज़ाद और खुले भारत बहरुल खत्ते के तई नुक़ नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से रबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिली है। ईरान के शहर तेहरान में साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में कसी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी मजलिस का वक्त अब ख़त्म हो।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, गीत SH बिहारी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। साथियों, बात करते हैं संगीत की। संगीत का महत्व अगर हम बात करें तो संगीत मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी है। प्राचीन काल से ही संगीत का उपयोग मन को शांति देने, आनंद प्रदान करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता रहा है। साथियों, संगीत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये मनुष्य के मानसिक तनाव को कम करता है। मधुर संगीत सुनने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के व्यस्त जीवन में संगीत लोगों को तनाव और चिंता से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, संगीत सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। संगीत की कोई सीमा नहीं होती, ये पूरे विश्व को जोड़ने की क्षमता रखता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी संगीत का उपयोग किया जाता है। संगीत चिकित्सा यानी म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं के उपचार में सहायता मिलती है। साथियों, संगीत जीवन को सुंदर, मधुर और आनंदमय बनाता है। ये मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित रखने में सहायक है। इसलिए संगीत का महत्व मानव जीवन में सदैव बना रहता है।

0: गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सत्य आवाजें, आशा भोसले सुरेश वाडिकर की, गीत गुलजार का और संगीत विशाल का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव।

0: केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, बात करते हैं जनसंचार में रेडियो का महत्व विषय पर। साथियों, रेडियो जनसंचार का एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय माध्यम है। ये लंबे समय से लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का कार्य करता आ रहा है। तकनीकी विकास के इस युग में रेडियो अपनी सरलता, सुलभता और व्यापक पहुंच के कारण महत्वपूर्ण बना हुआ है। साथियों, रेडियो का सबसे बड़ा गुण इसकी व्यापक पहुंच है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अन्य संचार माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं होते, वहां भी रेडियो लोगों तक समाचार और आवश्यक जानकारी पहुंचाता है। बिजली या इंटरनेट की सीमित उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी बैटरी से चलने वाले रेडियो उपयोगी सिद्ध होते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में रेडियो सूचना प्रसारण का एक विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, मौसम की जानकारी, कृषि संबंधी सलाह, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जानकारी रेडियो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती है। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी रेडियो लोगों को समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। साथियों, रेडियो और शिक्षा की अगर हम बात करें तो रेडियो शिक्षा और जन जागरण का भी प्रभावी साधन है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, चर्चाओं, साक्षात्कारों और विशेष प्रसारणों के माध्यम से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है। किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रसारित कार्यक्रम आज समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। संगीत, नाटक, कविताएं, वार्ताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रोताओं का मनोरंजन करने के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक समझ को भी समृद्ध करते हैं। साथियों, रेडियो एक सस्ता, सुलभ और प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बदलती तकनीक के बावजूद रेडियो की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और भविष्य में भी बनी रहेगी। बातचीत हम और भी करेंगे। आइए सुने मोहम्मद अजीज, शोभना जोशी की आवाजों में हम फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सतयुग गीत अभी आपने सुना। बात करते हैं बाल विवाह मुक्त भारत। जी हाँ साथियों, बाल विवाह भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कम आयु में विवाह होने से बच्चों, विशेषकर बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बाधित हो जाता है। इसलिए बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बाल विवाह के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कम विवाह में गर्भधारण करने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा बीच में छूट जाती है, जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। बाल विवाह गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता को भी बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न कानून और योजनाएं लागू की हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, जागरूकता और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। साथियों, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समाज, परिवार, विद्यालय और प्रशासन सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और तथा कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। बाल विवाह मुक्त भारत केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और समतामूलक समाज की नींव है। जब प्रत्येक बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्राप्त करेगा, तभी सच्चे अर्थों में बाल विवाह मुक्त भारत का सपना साकार होगा। बाल विवाह रोकें, शिक्षा का दीप जलाएं, सुरक्षित बचपन और सशक्त भारत बनाएं। बातचीत और भी करेंगे, सुनते हैं बप्पी लहरी की आवाज में डिस्को डांसर फिल्म का ये गीत, गीत अनजान का और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओ, कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए अभिजीत की आवाज में समीर का लिखा गीत संगीत नरेंद्र श्रवण का, फिल्म का नाम राज।

श्रोताओं, गीत तभी आपने सुना। बात करते हैं अल्पसंख्यकों की मलिन होती बस्तियों में सुधार विषय पर। साथियों, अल्पसंख्यकों की मलिन बस्तियां सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्यधारा से अक्सर पीछे रह जाती हैं। इन क्षेत्रों में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सड़क, बिजली और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। ऐसी परिस्थितियां वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं और उनके समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन बस्तियों में सुधार के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और समाज को मिलकर कार्य करना चाहिए। स्वच्छ पेयजल, उचित जल निकासी व्यवस्था, पक्की सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही कौशल विकास एवं स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। साथियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए। जागरूकता अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता से इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों की मलिन बस्तियां और इनके विकास केवल आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समानता, सम्मान और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इन बस्तियों में निवासियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं प्राप्त होंगी, तब वे देश के विकास में अधिक प्रभावी योगदान दे सकेंगे। सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए सुनी है, लता मंगेशकर और उदित नारायण को, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत उत्तम सिंह का।

यशोदाभाई, यौवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे 85.326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की हिंदी में। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा राजस्थानी में, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल कार्यक्रम आप सुना करते हैं संध्या 7 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा। बेर के बगीचों में सामूहिक कार्य, मुर्गी पालन, चारे वाली फसलों में ज्वार व लोबिया की बुआई। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत और लोक भजन। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 9:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। खेल जगत आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 10:30 पर। ये थी कार्यक्रम की जानकारी।

0: हम आकाशवाणी सूरत कर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।
1: कलम दे धनी साईं कुंभनदास, कृष्ण जैकू सांवला, सांवल शाह, बेपरवा, किशन, कान्हा, पता नहीं कितने नावां दे नाल वरियां तू सड़ा वेंदा रही है। उसे कृष्ण दे गुणगान करन आले भक्तां विच थे हन अठ वड्डे कवि, जिन्हां को बाद विच अष्ट छाप दे कवि सड़ा गया। इस अष्ट छाप दे कवियां विच सब तू पहले कवि थे साईं कुंभनदास जी। इन्हां दे बाद साईं सूरदास, साईं कृष्णदास, साईं परमानंद दास, साईं गोविंद स्वामी, साईं छीर स्वामी, साईं नंद दास, साईं चतुर्भुज दास। ये सिलसिला, ये रीत 1448 ईस्वी तो ला के 1530 ईस्वी तक, यानी तकरीबन पूरे 100 साल चली। ये शुरुआत साईं कुंभनदास नाल शुरू।

चितवन वह हास मनोहर वह नटभर बप वेखे श्याम सुंदर संग मिल खेलन की आवत ही है अपेखे कुंभन दास लाल गिरधर बन जीवन जन्म अलेखे। मतलब कितनिया डिवारा साई को बिना डिठे मेरिया गुजर गई हैं। बाल किशोर नंद दा पुत्र जो हूँ छुअर बनदा वेंद है ओ शोभा दे पिंडे दी लिशक जेको करोड़ा चंद्र डे दे रहा वेंदे हैं ओ उंदी नज़र उंदा हासा ते शाम सलूणे नाल रल के खेडन दी लालसा दिल दे विच उठदी पई है। कुंभन दाता दे हैं के गिरधारी दे बगैर ये जिंदगी भी किसे कम दी बिल्कुल नहीं लगती। ये गावण सुन के गुसाई जी का दिल भी पंघर गया। उन्हें सोचा जो कुंभन दास को एक पल किते भी श्रीनाथ को लूँ अलग नहीं किता बन सकता। उन्हें कुंभन दास को वापस वल वंजन की इजाजत दे दिती। श्रीनाथ जी दे वला दर्शन करके कुंभन दास जी एकदम वल चंगे थी गए। एक बिया भी किस्सा बहु मशहूर है। उस वेले हिंदुस्तान की गद्दी ते मुगल बादशाह अकबर बैठा है। अकबर दे दरबार एक गवैये ने कुंभन दास का एक पद गा के सुनाया जेकू सुन के अकबर बादशाह ने साई कुंभन दास को अपने दरबार आवन की ते फतेहपुर सीकड़ी का सुनेहा पाठ दिता। पहले तो कुंभन दास की मर्जी न थी कि वह राज दरबार वंजन पर जिस वेले सैनिकां ते दूतां जो सड़न किते आए हैं बहु ज़्यादा तरले किते तो वह पैदल ही उन्होंने नाल टुर पे उन्हां दी पालकी ते घोड़ां दी सवारी किते उन्हां साफ हटक दिता। कुंभन दास दी पगड़ी फटी हुई है ते कपड़े भी मैले हैं। श्री नाथ दे दरबारी को बादशाह अकबर दा सजा होया दरबार डू कौड़ी दा भी ना लगा। वो सोचेंदे पए हैं जो उन्हां कोलों ए जा केड़ा पाप थी गया है जो उन्हां को इस दरबार विच हाजिर थीना पै गया है। बादशाह अकबर ने साई कुंभन दास की बहु अस तस्ते आ भगत की। कुंभन दास को इवें लगा जिमें वो नरक चा खड़े हो। इस जात तो ब्रज बहु सोना है जित भगवान कृष्ण आप खेडते हैं। अकबर ने उन्हों को एक पद गावण की गुजारिश की। कृष्ण दे दरबारी को तो कृष्ण लीला पद ही गावना है। बादशाह ने आखा जो कोई मैडी वालों भेट तो स्वीकार करो। कुंभन दास जी ने आखा अगर तुसा सच भेंट देना चाहते हो तो अज तू बाद मैं को दरबार न छड़ा वंजे। इस मज़ेदार गल ए भी है कि उन्हें जो पद गाया है वो इवें है भगत को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम जाको मुख देखे दुख लागे ताको करनो पर्यो प्रणाम कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सब बेकाम। मतलब एक भगत बंदे दा राजे दे दरबार की कोई कम नहीं होंदा। आंदे वेंदे राज जुतियां भी त्रुट गई ते रब दा नाम भी विसर गया। जैंदा मुंह देखण नाल ही दुख लगदा होवे ऊकू भी मत्था टेकना पोवे तो यह बहु भैड़ी गाल है। कुंभन दास साई आदे हैं जो कृष्ण भगवान दे अलावा सारे बेकार कह कम दे नहीं। इस बादशाह अकबर की भी वड्याई देखने वाली है जो उन्हें यह सब सुन के भी आदर सत्कार नाल उन्हां को विदा किया। इस तरह एक बिया किस्सा भी बहु मशहूर है। ये गाल 1563 ईस्वी की है। जड्डन महाराज मान सिंह ब्रज आए हैं। वृंदावन दर्शन के बाद वो गोवर्धन आए श्री नाथ जी के दर्शन किते। उस वेले साई कुंभन दास जी मृदंग ते वीणा दे नाल कीर्तन करेंदे पए हैं। राजा मान सिंह भी संगीत दे बड़े कदरदान हैं। वो ये देख के अचरज करेंदे रह गए। उन्हां को मिलन कीते वो उचेचा जमुनावतो ग्रां गए। उस कुंभन दास की माली हालत देख के हैरान थी गए। जिस वेले महाराज मान सिंह पुजे कुंभन दास कृष्ण दे रूप चिंतन च ध्यान ला के बैठे हैं। अख खुलण ते उन्हां भतरू जी कोलों आसन ते शीशा मंगा। उत्थों वलदा मिला जो वच्छी घा खा गई है ते पानी भी पी गई है। राजा मान सिंह समझ गए जो पानी मुँह डेदे हो सन। उन्हें सूने का शीशा दिता ते मोहर की भरी थैली भी दिती पर साई कुंभन दास ने घिनण तू साफ मना कर दिता। वलदे वेले राजा मान सिंह ने जमुनावतो ग्रां भी कुंभन दास दे ना करण की तजवीज़ की पर जग दे मालिक दे

साईं झूलेलाल दी इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। मतण ही कोई सिराए की बिरादरी विच इंझा बंदा हो सी जे ना सुन रख्या हो सी। बहु वड्डे वड्डे गायकां ने एक गीत गाया है। अज असाकू रुपेश चोपड़ा जी एक गीत गा के सुने सन दमादम मस्त कलंदर।

दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाले मेरी पत रखियो बला झूले लाल।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध में गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों से 4% की कमी। डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और समृद्धि का रास्ता खुला है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की गतिविधियों को बढ़ाकर उन्हें मजबूत किया जा रहा है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: श्री शाह ने कार्यक्रम में जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ प्रदेश में हर गांव और ढाणी में सहकारिता आंदोलन पहुंचा है। राज्य की 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़े हैं। वहीं सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े गए हैं।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की सभा को भी संबोधित करेंगे। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर रहेंगे। इसके बाद वे न्यूजीलैंड भी जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से आज गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा गया। इससे किसानों का लगभग 20 साल लंबा इंतजार समाप्त हुआ और अब उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने 2 नई PDN आधारित लिफ्ट परियोजनाओं और गुड़ला लिफ्ट योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने कहा कि इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा।
3: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है, तो निश्चित रूप से 5 नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिए कि तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
0: गौरतलब है कि पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से कमांड और गैर कमांड क्षेत्र के किसानों के बीच विवाद था, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने आंदोलन भी किए। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आपसी सहमति से समझौता करवाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ

0: साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर पुलिस की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंभीर अपराधों में 4% से अधिक की कमी आई है। वहीं पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्यवाही, नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियानों ने प्रदेश में पुलिसिंग को नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई इस प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कार्य प्रणाली का पिछले 6 महीनों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि अपराधों की मदद से संपत्ति अर्जित करने वालों को आर्थिक लाभ से वंचित करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स का जिक्र करते हुए पुलिस महानिदेशक ने इस क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए और तेजी से काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच को तेज किया गया है। पोक्सो के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस का औसत अनुसंधान समय 78 दिन से घटकर 51 दिन और दुष्कर्म के मामलों में 81 दिन से कम होकर 52 दिन रह गया है।
1: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहां पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।
0: प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समूचा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम श्री मुखर्जी के नाम पर करने और उनके आदर्शों को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर 12 योजना के पार्क का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने का ऐलान किया। साथ ही इन सभी स्थानों पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से नई पीढ़ी को, श्री मुखर्जी के आदर्शों और विचारों से जोड़ेगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर पौधरोपण और पुष्पांजलि कार्यक्रम रखे गए। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉ. श्यामा मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी रखी गई। पूर्वी भारत में हवाओं के कम दबाव से राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 9 जुलाई तक उदयपुर और कोटा संभाग तथा आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उधर जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ 13 जिलों में बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट बताया है। इस बीच आज तेज गर्मी और उमस के बाद बालोतरा में अच्छी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर जिले के शिव तथा चौहटन में भी धूलभरी आंधी चली और कई इलाकों में तेज पानी बरसा। जालौर के आहोर, सायला, भीनमाल, बागोड़ा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात हुई। झुंझुनू में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर चला। उधर पाली और राजसमंद जिले के कुमलगढ़ में करीब 1 घंटा मूसलाधार बरसात हुई। जून महीने से अब तक बीकानेर, चूरू और डीडवाना कुचामन में असामान्य बरसात हुई है। वहीं 10 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 10 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 394 इस समय आंशिक रूप से भरे हुए हैं। वहीं 5 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आज से प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया गया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। सड़क हादसों की

0: रोकथाम करने और यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। चूरू जिले के रावतसर कुंजला गांव में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दो अलग अलग मकानों पर दी गई दबिश में आरोपियों के कब्जे से 90 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार ये लोग पहले साइबर ठगी के बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की बात करते हैं। इसके बाद लोगों को झांसे में लेकर रुपये ऐंठने का काम कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध से गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों में 4% की कमी, DGP राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पिछले दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिले। भीषण गर्मी और उमस के बीच कल मॉनसून ने दस्तक दे ही दी। बारिश की फुहारों ने जिलेवासियों को कुछ राहत प्रदान की, लेकिन उमस के चलते लोग परेशान रहे। इससे पहले आंधी तूफान और बारिश ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिले में 1500 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए। बेमौसम की बरसात से 400 से अधिक गांवों और ढाणियों की बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 20 किलोवाट क्षमता के FM स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पिछले दिनों वर्चुअल रूप से किया गया। FM ट्रांसमीटर के लगने से सरहदी इलाकों के नागरिकों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता के साथ विस्तारित कवरेज मिलेगी। साथ ही स्थानीय समाचारों, जनहितकारी योजनाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों और कृषि संबंधी जानकारी का प्रसारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकेगा। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जिले भर में ब्लॉक स्तर पर जनसम्मेलन आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। पंचायत समिति जैसलमेर की रूपसी ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर रूपसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषण वाटिका निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। जिले के पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नगर विकास न्यास ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मूल सागर क्षेत्र में प्रस्तावित योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। इस परियोजना से न केवल जिले में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। UIT को इस परियोजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को लेकर पोलियो बूथों पर विशेष उत्साह देखने को मिला। अभियान के तहत श्री जवाहर चिकित्सालय में विधायक छोटू सिंह भाटी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिन तक घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो रोधी दवा दी। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष पहल की है। इसके तहत स्वर्ण नगरी के होटलों में ठहरने वाले सभी मेहमानों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से ई विजिटर्स पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा। इसे लेकर बीते दिनों बैठक आयोजित कर होटल संचालकों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर से लेकर सरहद तक योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में रखा गया। इसके अलावा शहर के पर्यटन स्थल सोनार किला और गढ़सीसर झील के साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम हुए। नियमित और सुचारू पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पिछले दिनों गजरूप सागर स्थित विभागीय परिसर में 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इन नलकूपों के शुरू होने से जैसलमेर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों की पानी की समस्या भी दूर होगी। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण

0: सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए पिछले दिनों नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 3 दिन की ये प्रदर्शनी 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर आधारित रही। जिले के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को विकसित कर पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान दी जाएगी। नगर परिषद ने इस स्थान को मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल 38.5 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। पर्यटकों के लिए जैसलमेर में सनसेट देखने का सूली डूंगर सबसे पसंदीदा स्थल है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत अब जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। योजना के तहत बॉर्डर पर बसे सुदूर गांवों को विकास और बुनियादी सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है, जहां 3 करोड़ रुपए की राशि से ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। केंद्रीय मंत्री अमित शाह काया सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता रा हल्का माए घणो बढ़ावो भी हो है। करौली जिला रा पांचना बांसू गंभीर नदी और कमांड क्षेत्री नहरा माए पानी छोड़ बारी शुरुआत भी। राज्य माए गंभीर अपराध माए 4% सु बत्ती री कमी, डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस री उपलब्धियां रो ब्यौरो पेश करियो। और प्रदेश रा 13 जिला माए काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट जारी।

0: समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। देश में सहकारिता रे मार्फत लाखों लोगारा जीवन में बदलाव आयो है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कया के सुधारा डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता हलका माए घणो इजाफो भी है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय रा पांचवा स्थापना दिवस रे मौके राख्या जलसा माए बोल रिया हा। वे कया के हर एक खेतर माए बत्तो चोखो प्रदर्शन करबा वाली पांच सहकारी समितियां ने मान्यता देबा खातिर रैंकिंग ढांचो ऐलान करियो गयो है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपया रो कारोबार करे है और देशरी माली व्यवस्था माए सहकारिता रा बढ़ता योगदान ने दर्शावे है। गृह मंत्री कया के राज्य माए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्सरी गतिविधियां ने बढ़ार मजबूत करियो जा रियो है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये पांच साल में किया है।
0: श्री शाह कार्यक्रम माए जयपुरा सुमेल गांव माए सहकार वन परियोजना री शुरुआत करी। इनमाए 64 करोड़ जमी माथे 64 एकड़ जमी माथे सहकार वन विकसित करियो जावेला, जिनमाए खेजड़ी, रोहिड़ा और नीमरा पेड़ लगाया जावेला। इन मौके मुख्यमंत्री कया के सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण रो जरियो बण्यो है। सहकार सु समृद्धि का मंत्र रह सागे ही प्रदेश रा हर एक गांव और ढाणी माए सहकारिता आंदोलन पूग्यो है। राज्य री 42,000 सु 32 सहकारी समितियां सु 1,35,00,000 सु 32 सदस्य जुड़िया है। वठी ने सहकार सदस्यता अभियान रे तहत 80,90,000 सु 32 युवा सदस्य भी जुड़िया है।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर

0: ऑनलाइन उपलब्ध करवाया, आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल हूं थोड़ी देर पहली इंडोनेशिया रा जकार्ता पूग्या। इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हवाई अड्डा माथे प्रधानमंत्री मोदी रो स्वागत करिया। इन यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति रे सागे दोनों देशां रे बीच आपसी साझेदारी माथे चर्चा करेला। श्री मोदी जकार्ता माए प्रवासी भारतीय समुदाय सभा ने भी संबोधित करेला। तीन देशां री यात्रा रा दूजा फेर मा श्री मोदी 8-10 जुलाई ताई ऑस्ट्रेलिया प्रवास माथे रहवेला। इन रे पछे वे न्यूजीलैंड भी जावेला। करौली जिला रा पांचना बांध सु आज गंभीरी नदी और कमांडा हलकारी नहरा माए पानी छोड़ियो गयो। इनसु कास्कारा रो करीब 20 बरस लंबो इंतजार पूरो भयो। अबे वाने सिंचाई खातर पानी

0: मोदी हाल हूँ सू थोड़ी देर पहली इंडोनेशिया रा जकार्ता पू गया। इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हवाई अड्डा माथे प्रधानमंत्री मोदी रो स्वागत करिया। इन यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति रे सागे दोनों देशों रे बीच आपसी साझेदारी माथे चर्चा करेला। श्री मोदी जकार्ता माए प्रवासी भारतीय समुदाय सभा ने भी संबोधित करेला। तीन देशों री यात्रा रा दूजा फेर में श्री मोदी 8-10 जुलाई ताई ऑस्ट्रेलिया प्रवास माथे रहवेला। इन रे पछे वे न्यूजीलैंड भी जावेला। करौली जिलारा पांचना बांध सु आज गंभीरी नदी और कमांडा हलकारी नहरा माए पानी छोड़ियो गयो। इनसु कास्कारा रो करीब 20 बरस लंबो इंतजार पूरो भी हो। अबे वाने सिंचाई खातर पानी मुहैया वह सकेला। इन मौके व्या कार्यक्रम माए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म दोनों भी पीडीएन आधारित लिफ्ट परियोजनावा और गुडला लिफ्ट योजनारी नींव राखी। इन मौके जल संसाधन मंत्री श्री रावत कया के इनसु सिंचाई व्यवस्था मजबूत वेला और खेतर रा कास्कारा ने फायदो वेला।
1: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है। तो निश्चित रूप से पांच नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिया है कि तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
0: ध्यान जोग है कि पांचना बांधरा पानी रा बंटवारा बाबत लंबा टेमू कमांड और गैर कमांड हलकारा किसाना रे बीच विवाद चल रहे हो जिनने लेर दोनों पक्ष आंदोलन भी करिया। राज्य सरकार दोनों पक्षारा नुमाइंदा सु बातचीत कर आपसी सहमति सु समझौतो करवायो। ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जयपुर माए प्रेस वार्ता कर पुलिस री उपलब्धियां बताई। बना कया के प्रदेश माए गंभीर अपराध माए 4% सु बत्तीरी कमी आई है। वटी ने पेपर लीक माफिया माथे कड़ी कार्यवाही, नशा तस्कर और समूह माए करया गया अपराध रे खिलाफ करोड़ों अभियान प्रदेश री पुलिसिंग ने नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी माए भी इन प्रेस वार्ता माए पुलिस महानिदेशक पुलिस कार्यप्रणाली रो लारला 6 मीनारो लिखोजखो पेश करियो है। मना कया कि अपराधरी मदद सु संपत्ति इकट्ठी करबा वाला ने माली फायदा सु वंचित करबारी कोशिश तेज करी जारी है। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स रो जिक्र करता थका पुलिस महानिदेशक इन हलकारी चुनौती ने देखता थका और तेजी सु काम करबारी जरूरत बताई। वे कया के इन खातर स्मार्ट पुलिसिंग माथे जोर दियो जावेला। डीजीपी बताया कि महिला सुरक्षा सु जुड़िया मामला माए जांच ने तेज करियो गयो है। पोक्सो तहत दर्ज प्रकरण माए पुलिस री जांच री मियाद 78 दिन सु घटार 51 दिन और दुष्कर्म रा मामला माए 81 दिन सु घटार 52 दिन रहगी है। वना बताया कि साइबर अपराधारी रोकथाम और पीड़िता ने बेगी राहत देबा खातर बत्ती और प्रभावी कार्यवाही करी जा रही है।
2: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।

मौके श्री शर्मा प्रदेश रा खास चार पारकारो नाम श्री मुखर्जी रा नाम माथे करबा और वारा आदर्श आने समर्पित स्मारक स्थापित करबारो ऐलान करियो मुख्यमंत्री जयपुरा वुडलैंड पार्क जोधपुरा विवेक विहार रा सेंट्रल पार्क कोटारा रामचंद्रपुरा अटवाल नगर रा पार्क और उदयपुरा सेक्टर 12 योजना रा पार्क रो नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रा नाम माथे करबारो ऐलान करियो साथे ही इन सगली ठोड़ा माथे राष्ट्रकानियों मारा योगदान ने प्रदर्शित करबा वाला स्मारक भी बनाया जावेला मुख्यमंत्री कया के पहली प्रदेशवासियों ने खास रूप में नवी पीढ़ी ने श्री मुखर्जी रा आदर्शारा विचार सु जोड़या जावेला भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री 125वीं जयंती रे मौके प्रदेश माए कई ठोड़ा माथे पौधा लगाया गया और पुष्पांजलि कार्यक्रम राखिया गया पूर्वी भारत हवावारा कम दबाव सु राज्य रा पूर्वी हिस्सा माए आवता 4-5 दिन तक मानसून सक्रिय रह सके है इन दौरान बत्ता हल्का माए हल्की सु मध्यम और कटे-कटे भारी में बरस सके है 9 जुलाई तक उदयपुर और कोटा संभाग रे आरे सारे रा हल्का माए कटे-कटे भारी सु घनी भारी बरसात वे सके है मौसम महकमा रे मुजब आज अजमेर भरतपुर बीकानेर जोधपुर और जयपुर संभाग रा कुछ एक हिस्सा माए गरज रे साके तेज बारिश वे सके है बठीने जोधपुर और बीकानेर संभाग माए भी आवता दो दिना माए कुछ एक हल्का माए भारी में बरस बारा आसार है महकमो काल तेज हवावां और गरज चमक रह सागे 13 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट बतायो इन बीच आज तेज गर्मी और उमस रे पछे बालोतरा माए चोखो में बरसियो जैसलमेर बाड़मेर जिला रा शिव और चौहटन माए भी धूल भरी आंधी चाली और कई इलाका माए तेज पानी बरसियो जालोर रा आहोर सैला भीनमाल बागोड़ा माए तेज हवा वारे सागे रिमझिम में बरसियो झुंझुनू माए भी तेज हवा वारे सागे छितरायो में बरसियो वठेने पाली और राजसमंद जिला रा कुंभलगढ़ माए भी करीब एक घंटा मूसलाधार में बरसियो जून महीना सु हाल तय बीकानेर चूरू और डीडवाना कुचामन माए भी में बरसियो वठेने 10 जिला माए 32-18 और सामान्य और 10 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो प्रदेश का छोटा बड़ा 693 बांधा माए सू 394 माए टेम थोड़ा टेम माए पानी भरियो वठेने 5 बांध माए थोड़ो पानी भरियो है आज विश्व जुनोरिस दिवस है ओ दिन जिनावरा सु मिनखा माए फैलवा वाली संक्रामक बीमारियां रा खतरा और उनसु सावचेती बरसबा और जाग जगाबारा लगा सु मनायो जावे है जुनोटिक बीमारियां जन स्वास्थ्य जिनावराई सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा खातर बड़ो खतरो है पशुआ और मिनखरा स्वास्थ्य सुरक्षित रखबा खातर पालतू जनावर और टेम माथे टीकाकरण करायो जानो जरूरी है और अब आखिर माय खास खबरा एकर फेरू केंद्रीय मंत्री अमित शाह कया सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता रा हल्का माय घणो बड़ागु भीयो है करौली जिला रा पांचना बांसू गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्री री नहरा माय पानी छोड़बारी शुरुआत भी राज्य में गंभीर अपराध में 4% सु बत्ती की कमी डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस उपलब्धियां रो ब्यूरो पेश करियो और प्रदेश का 13 जिला में काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला में येलो अलर्ट जारी इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठोई पुरोबियो माखलो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो चावेला नमस्कार

प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री जयंती माथे समूचो देश वाने याद करियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अपरा रहवास माथे वाने पुष्पांजलि अर्पित करी।

मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरत करके एक कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनिए सगले श्रोतावाने, सुनील भाई की ओर से मोकली मोकली राम राम। सगला ने राजी रखे राम जी, तमाशताशुआ कृपा है कह हर भाई बंधु का, हर महाराज का श्रोता है। भांगा लाणा बाणा जको है वो बस तो रेवे, राजी खुशी रहे, टाबरिया जका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। श्रोताओं, चौपाल के प्रोग्राम में थारो स्वागत है। श्रोताओं, बात करां सामाजिक अपनों जो को तानू बानू है बिंग बारे में, तो कोई भी जिया समाज है वो कि है भाईचारे पर, विश्वास पर, सांस्कृतिक मूल्या और परंपरा पर, और जो का एक दूसरे के प्रति सहयोगी भावना है बी पर टिकट हो है। जिया मान लो एक कपड़ो है, एक एक धागों मिल के मजबूत बने, बिया ही जका इंसानी रिश्ता है, बांशु समाज बने। आज को जो उद्यान आधुनिक दौर है, इमें तानो बानो तेजी से आपने किए कमज़ोर होने लाग रही है या के दया तो बिखरन लाग रही है। श्रोता, इनको कोई एक कारण कोनी है, कोई एक व्यक्ति की सोच कोनी है, बल्कि मैं कई सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी जगह बदलाव होने लाग रहा है बेजिम्मेदार है। जिया के पहली बात है कि अत्यधिक व्यक्तिवाद और स्वार्थ की भावना अब हर आदमी में बन गई है। पहला के पुराने टाइम में तो हम की भावना होती, यानी सामूहिकता की भावना होती, और बीम परी पूरा समाज चाल तो जटे पूरा गांव मोहल्ले की खुशी और दुख सुख साझो हों तो। पर आज की है हर व्यक्ति के अंदर मैं की भावना होगी, मैं मेरो परिवार मैं करूँ मेरे तान चाल है, आ सब बात की है व्यक्ति के अंदर घर कर गई और इन पर व्यक्ति के सिमटन लाग गयो। लोग केवल की है आपकी जकी तरक्की है या जकी सुख सुविधा है बिंग बारे में सोचन लाग गया, और जहाँ सामूहिक जिम्मेदारियाँ है, आपसी सहयोगी भावना है, आदमी में खत्म होने लग रही है। दूसरी जिया तकनीकी साधन चाले आजकल, जिया सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इनके प्रयोग आदमी बहुत ज़्यादा करने लाग गयो, एर किए कन्ने बैठे हुए बिंग सागे बात कौन करे, और सारे दिन की है स्क्रीन पर ध्यान रखे, कमेंट करे, लाइक करे, इन तई आदमी का जो रिश्ता है भी सीमित रह गया। इशू की है आदमी के अंदर देखो एकलोपन है, एकांकी भाव है, वो ज़्यादा घर करने लाग रही है, कन्ने बैठे सागे बात कौन करे, और जो है वो सारे दिन ही पर भी लाग गया। और आदमी तो भी इशू की है आपसी जकी है बातचीत है बा खत्म होने लाग रही है, आदमी से दूर होने लाग रही है। तीसरा जो सारों मोटो कारण है वो है संयुक्त परिवारों को टूटनो, जो अपने समाज को मुख्य आधार हो संयुक्त परिवार है। पहला किया सारा जका संयुक्त परिवार होता, मोटा मोटा परिवार होता, एर बीमा दादो दादी माऊ बाबो काकू काकी बंगा टाबर और भी रिश्तेदार रहता, बांशों की जका अपना टब रहा भी संस्कार सीखता, सह सुनता सीखता और मिल गए रहनो सीखता। एकल परिवार माँ बात को नहीं हुए, और अब की सिर्फ माता पिता हुए या बेबी के दोनों काम काजी हुए, तो बिंगे कारण आपके टाबरान में पूरा टेम कौन दे सके, और दादो दादी कन्ने हुए कौनी, तो बने संस्कार देवे कौन, कौन बने बतावे के अच्छो है के माड़ो है, इन पर कौन ध्यान दिए। और आजकल स्कूलों में तो इनके बारे में बतावे ही कौनी। और तीसरा कारण है कि हर आदमी अब की है शहर की तरफ दौड़न लाग रही है, गांव छोड़ के शहर की तरफ भाजन लाग रही है, क्योंकि बठे रोजगार का साधन ज़्यादा हुए, जीवन की जकी है बेहतर तरीकों जिस का आदमी की सोच होगी, और गाँव से वो शहर की ओर पलायन करने लाग रही है। शहर में की कंक्रीट की दुनिया है, बट है लोग की है पड़ोसी नहीं कौन जाने भी अगल बगल में कौन रहे, ऊपर नीचे कौन रहे, मशीनी जिंदगी है, टेम की हर आदमी कन कमी है, तो इन कारण की है लोगों कने जका टेम है।

सामाजिक उत्सव मनाने का, आपसी मेल जोल का ये खत्म होने लग रहा है। तो इसी बहुत सी बातें हैं जिसके कारण आपनों सामाजिकता नो बानो है वो आजकल खत्म होने लग रही है, अरविंग है खत्म होने की कगार पर है। आने वाली जकी पीढ़ियाँ हैं वे इन्हें बिल्कुल भूल जाएगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा की है सब ने टाइम देना चाहिए और सब के सागे हेत रखना चाहिए, हिल मिलजुल के रहना चाहिए, बातचीत भी रखनी चाहिए। और अपना जका आने वाली पीढ़ी है, अपना बच्चा है, बने अच्छा संस्कार देना चाहिए, हर रिश्ते के बारे में बताना चाहिए, अच्छी जानकारी देनी चाहिए, अच्छी संगत करनो बने सिखाना चाहिए ताकि बंगो जीवन सुधर सके और अपना जो सामाजिकता नो बानो है इन अंदर जगह ज़्यादा बदलाव होने लग रहा, बामें कमी आवे, आदमी में आदमी के प्रति प्रेम पैदा होवे। तो बातें आप और भी करशा, पहला सुनांगा हो प्यारो सो लोक भजन।

श्रोताओं सुनो ओ प्यारो सो लोक भजन, भजन बिना बावरो भयो। श्रोताओं बात करा अब खेती बाड़ी की, जो आपनों ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख धंधो है और हर किसान भाई इन करन लाग रहा है। तो जुलाई को जो यहाँ महीनों चल है, तो ये टाइम आप जहाँ बागवानी की बात करा, तो जहाँ बेलड़ी को बाग है, तो भी आप ये टाइम की है यूरिया की जकी मात्रा देवा बादी देश का एर त्यार जे गड्ढा करेड़ा है, तो वहाँ में फलदार पौधा ने पिंडी सहित आप लगा सका। पपीते को कोई बाग भाई लगाना चाहे तो ये टाइम पपीते की पौध की रुपाई कर देनी चाहिए। खड्डांग अंदर रुपाई शो पहला 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एर 50 ग्राम अपा क्यू नाल फास 1.5% ताकत की मिला सका। सब्जियां की बात करा जहाँ फूल गोभी की अगेती किस्म की टाइम बुआई कर सका, करेलो तोरू टींडसी है, काकड़िया है, बैंगन है, टमाटर है, अम की है किसान भाइयों इन टाइम फल छेदक गो प्रकोप हुए, तो इन कीट ने रोकना बहुत ही जरूरी है। प्रभावित जगह फल है बन के तोड़ के भूमि में गाड़ के नष्ट कर देना चाहिए और मेलाथियान 50 cc ताकत की जकी दवाई आवे 1 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए और कम से कम 3 दिन जो जनी छिड़काव करेडन है बिंग बाद में जका फल है ये खाण के काम में लेना चाहिए। बैंगन में पौध रोपण के 20 दिन बाद 20 किलो यूरिया, 20 किलो नत्रजन जकी 44 किलो यूरिया अपन प्राप्त है आ खड़ी फसल में देगे सिंचाई कर देनी चाहिए और संकर किस्म में आ मात्रा 62 किलो यूरिया के रूप में अपन दे सका। टमाटर में पौध लगाने के बाद 30 दिन बाद 30 किलो नत्रजन यानी 62 किलो यूरिया खड़ी फसल में देनी चाहिए और संकर जे किस्म अपनी लगाई है तो 45 किलो यानी 110 किलो यूरिया रखनी चाहिए। फूल गोभी की इम्प्रूव्ड जकी जापानीज किस्म है, पूसा हाइब्रिड 2 है, पूसा हिम ज्योति है, आ किस्म की किसान भाई नर्सरी तैयार कर सके भी खातर बहुत ही बढ़िया टाइम है। 1 हेक्टर क्षेत्र में पेड़ पौध तैयार करने सारू 375-400 ग्राम बीज की आपने जरूरत पड़े। पत्ता गोभी की गोल्डन एकर है, प्राइड ऑफ इंडिया है, आ किस्म की नर्सरी तैयार करके पौध तैयार कर सके और इन सारू 500 ग्राम जो बीज है प्रति हेक्टर खातर काफ़ी रेवे। फसल उत्पादन की जहाँ बात करा तो बाजरो है, ज्वार है, मक्का है, इंग सागे आप मूंग उड़द चमड़ा या सोयाबीन है, आगी मिश्रित या अंतरशस्य फसल ले सका। तिल की बुआई जो कोई किसान भाई करना चाहे तो जुलाई के पहले हफ्ते में कर देनी चाहिए। बुआई सारू प्रति किलो बीज ने 3 ग्राम थायरम जकी 75 WPC प्रारूप में आवे इंशु उपचारित करना चाहिए। मूंग है, उड़द है, चमला है, अरहर है, तो आ सारू की है 3 ग्राम थायरम

0: उपचारित करना चाहिए और 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर भी में मिलाना चाहिए और जुलाई गए मध्य तक भी जांच कर सका। मूँगफली की जकी झुमका किस्म है इनके पौधा पर बुआई गए 1 महीने बाद की है माटी चढ़ाने को काम किसान भाइयों ने करना चाहिए। कपास में वर्षा जी न हुए तो सिंचाई करनी चाहिए और साग की है निनान भी करना चाहिए, खरपतवार निकाल देना चाहिए। बाजरे की जकी मुख्य किस्म है राज 171 HHB 67 IP ICMH 356 RMB 173 RHB 177 GHB 538 मंडोर बाजरा कंपोजिट 2 RHB 121 CJP 9802 जो कि प्रमाणित है। ये 4 किलो बीज प्रति हेक्टर आपने रखना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 40-45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो इन तरिया जका किसान भाई है इन टाइम जिया काम धंधो करे आपकी फसलों में बागवानी में सब्जियों में तो अच्छा उत्पादन ले सके। तो बात आप और भी करांगा, पहला सुनाओ प्यारो सो लोक गीत।
1: मनडो फाट्यो बो

श्रोताओं सुनो ओ प्यारो सो लोक गीत केसरियो हजारी गुलरो फूल। श्रोताओं बात करा खेती बाड़ी सागे पशुधन की, तो पशुधन ने आपन की टेमो टेम पौष्टिक हरियो चारो चाहिए। तो इन सारू जिया बात करा ज्वार की और लोबिया की बिजाएगी, तो ज्वार की जिया बात करा तो ज्वार की एक बहुत ही बढ़िया हरियो चारो है और पौष्टिक है और पशु भी ने बहुत पसंद करे क्योंकि यह रसीली होवे। जहाँ टेम की बात करा तो खरीफ सीजन में ज्वार की बीजांत अपन ने सही टेम तो किया अप्रैल से जुलाई के बीच में है, और जो मानसून की पहली बारिश गसा गेंगी बटवार भी बहुत तेजी से हुए। गर्मी के सीजन में जो अपने कने सिंचांत को बढ़िया साधन है तो आप मार्च में बींगी बीजांत कर सका। इंगी उन्नत किस्म की आप बात करा तो जिया चारे सारों की है, एक कटाई वाली, दो कटाई वाली और ज़्यादा कटाई वाली जकी है, तो बिंग सारों इनको वर्गीकरण करोगी है। जिया एक कटाई वाली की बात करा तो पूसा चरी एक है, पूसा चरी 23 है, हरियाणा चरी 9, राजस्थान चरी 1 और 2। ज़्यादा यानी मल्टी कट्टाली जकी आवे है जका कई बार डास के, तो बिंगी जिया SSG 69 जकी ने मीठी सुडान भी बोले, MP चरी है और पंत चरी 5 है। आंगी भी जहाँ तापा करके ज़्यादा फायदा उठा सकें क्योंकि सीजन में एक या 3-4 कटाई दे सके। बीज की मात्रा और उपचार की बात करा तो एक एकड़ खातर आपने लगभग 12-15 शेर बीज की जरूरत पड़े। जे आप छिड़कों भी दिशूँ बोवा तो आपने 18-20 किलो तक बीज लाग सके। बीज उपचार किसान भाई जरूर करना चाहिए क्योंकि इनमें फफूंद जनित रोग बहुत आवे, तो बीबिंग बिचाव सारू आपने बिजाइश पहला बीज ने थीरम या कैप्टान दो नामों को एक दवाई 2.5 ग्राम प्रति बीज किलो बीज के हिसाब से ले गए उपचारित करना चाहिए। और खेत की तैयारी की बात करा ज्वार सारू तो खेत में 2-3 बार अच्छी तरियाँ हल मार के बढ़िया एर माटी ने भुरभुरो बना लेना चाहिए और

पाटो चला के खेत ने समतल कर देना चाहिए। लाइन शिव लाइन की दूरी की बात करना तो 25-29 सेंटीमीटर किसान भाई राख सके, और पौधे शिव पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीज किसान भाइयों अपने 3-4 सेंटीमीटर उन्डो जमीन में नाखनु चाहिए। खाद उर्वरक की बात करें ज्वार सारू तो अच्छा है चारू चारा सारू और ज़्यादा फुटाव खातर सही पोषण जो अटे मोटे मिलनो बहुत ही जरूरी है। इन सारों जी यहाँ रासायनिक खाद है प्रति एकड़ के हिसाबों बात करा तो बिजाई के टाइम अपन 30 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास देनी चाहिए। और बिजांत गए 30 दिन बाद या जब आप पहली कटाई करा बिंगा बाद किए 20 किलो नाइट्रोजन यूरिया के रूप में अपन दोबारा दे सका। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की बात करा तो ज्वार की है कि थोड़ा बहुत सुक्को सहन कर सके, पर ज़्यादा जी आप चारों लेनो चाहवा तो गर्मियों में हर 10 या 12 दिन का अंतर है, पर अपने ये बरसात न हो तो पानी जरूर लगाना चाहिए। और बिजाई के शुरुआती 3-4 हफ्ता तक खेत में खरपतवार है अन्न जरूर निकाल देनी चाहिए, और टेमो टेम अपने निराई गुड़ाई को काम भी करना चाहिए। तो इन तरह किसान भाई जे ज्वार की फसल लेवेगा तो अच्छो उत्पादन ले सकेगा। लोबिया की आप बात करा किसान भाइयों तो आप भी बहुत ही एक बढ़िया फसल है चारे खातर, क्योंकि यह दाल वाली फसल है तो इनमें ज़्यादा पोषक तत्व होवे और इन्हें चारे को राजा भी कहवे। इनमें लगभग 15-20 सैकड़ा तक प्रोटीन की मात्रा हुए जको जका अपना दुधारू पशु है वागो अच्छो दूधा बढ़ा सके। लोबिया की बिजाई सारू अपने टेम की जिया बात करा तो गर्मी को सीजन है तो भी मैं मार्च से अप्रैल के महीने में सारों बढ़िया हुए, और बरसात की ऋतु जियाँ खरीफ में जून गए आखिरी हफ्ते तक ले गए और जुलाई गए अंत तक आपांगी बिजांत कर सका। इनकी उन्नत किस्म की जियाँ बात करा तो CSFD1 है, UPS 5286, UPC 4200, CO5 और बुंदेल लोबिया 1 और 2 है। अमु आप कोई एक बिजांत ले गए एक किस्म ले गए आप बिजांत कर सका। बीज की मात्रा और उपचार की बात करा तो जे आप एकली फसल लेनी चाहवा सिर्फ लोबिया लोबिया की तो 12-15 शेर आपने प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़े, और जे मिश्रित खेती करा जियाँ ज्वार है मक्कू है अंग साग है तो बीज की जरूरत आपने 6-8 शेर प्रति एकड़ चाहिए। बीज ने बोन छू पहला राइजोबियम जो कल्चर आवे इशु जरूर उपचारित कर लेना चाहिए, जिशु की पौधा की जकी जड़ है बामा गांठा बने और बेहवाशु नाइट्रोजन सोग गए फसल ने हरी भरी रखे। खेत की तैयारी की आप बात करा लोबिया सारू तो 1-2 बार कल्टीवेटर मार के जोत गए और पाटो लगा गए और खेत ने 100 कर लेना चाहिए ताकि नमी बनी रहे, और जल निकासी का अच्छा प्रबंध रखना चाहिए क्योंकि लोबिया के खेत गमा पानी रुकनो बहुत ही नुकसानकारक है। लाइन शू लाइन की दूरी अपन 30-35 सेंटीमीटर रख सका, और पौधे शू पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रख सका, और बीज ने 3-4 सेंटीमीटर आप गहराई में बो सका। खाद और उर्वरक की बात करा इंग सारू तो आ एक की दाल वाली फसल है तो इन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत कौन पड़े क्योंकि आपे आपकी है हवा में नाइट्रोजन बनावे। प्रति एकड़ खाद की जी बात करा तो बिजाई के टाइम 8-10 शेर लगभग 20 किलो यूरिया और 20-25 किलो फास्फोरस अपना खेत में दे सका। सिंचाई और कटाई की बात करा किसान भाइयों तो सिंचाई की बात करा जिया तो गर्मी के हर 8-10 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़े और बारिश का मौसम में पानी जमा न होने देना चाहिए। कटाई को जो कोई सही टाइम है तो 50-60 दिन बाद जब फसल में फूल आना शुरू हो जाए और छोटी छोटी फलियां लगन लग जाए तो इनकी आप कटाई कर सका। तो इन सर तरियाँ किसान भाई की है ज्वार की और लोबिया की अच्छी हरे चारे की फसल ले गए आपको जो पशुधन है बिंगो स्वास्थ्य बढ़ा सके और अच्छो दूध उत्पादन ले सके। बात आप और भी करांगा पहला सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं, सीमा मिश्रा की आवाज़ में सुनो प्यारो सो लोक गीत। बात करा अपा मुर्गी पालन के बारे में, तो भारत के अंदर की है वो जो को व्यवसाय है बहुत ही तेज़ी से फैलन लाग रही है। इंगा कई कारण हैं। एक तो कारण वो है कि मैं लागत कम लग गए, सगे कम जिज्ञा चाहिए और कम समय गमा अपन ज़्यादा ज़्यादा मुनाफो देश के। जी आप कोई किसान भाई मुर्गी पालन शुरू करना चाहे तो बिना की जगह जरूरी बातें हैं। पहला ही जानकारी लेनी बहुत ही जरूरी है, तो नज़दीक की जगह अपना कृषि विभाग है बटू जानकारी ले सकें। मुर्गी पालन किसान भाइयों दो उद्देश्य से करो जावे। एक तो जगह ब्रायलर फार्मिंग है यानी मांस उत्पादन सारू, और दूसरी लेयर फार्मिंग है यानी अंडा बेचण सारू। तो अपने जो व्यवसाय अच्छो लागे बीमू आप दोनों में कोई एक व्यवसाय चुन सका। ब्रायलर है ये जगह चूजा की है बहुत तेजी से बढ़े और मात्र 35-45 दिन में आंगू वजन 2-2.5 किलो हो जाए और बाजार में बिकन खातर तैयार हो जाए। इस साल में 6-7 बार बेच गए आप मुनाफो कमा सका। लेयर की बे मुर्गियां हैं जका अंडा देवे और ये अंडा सारू पाली जावे और जदे लगभग की है 18-19 हफ्ता की उम्र में अंडो देनो शुरू कर दिए और अगले 1 साल तक यानी 72-78 हफ्ता तक लगातार अंडा दे सके, जिस अपन की रोज़ आमदनी होवे। देसी और कड़कनाथ की मुर्गी पालन है। इनके बारे में जो आजकल के शुद्ध देसी और कड़कनाथ जो कि काली मुर्गी हुए इनकी मात जो कि बहुत ही बढ़ने लग रही है, क्योंकि इनका मांस और अंडा महंगा बिके और इनमें बीमारियाँ भी कम लग गए। तो सारों पहला अपन के शेड को निर्माण करना चाहिए जो कि इनमें जरूरत हुए भी हिसाब से मुर्गियाँ रहन सारों की जो शेड है और बंगे स्वास्थ्य ने ध्यान में रख के बनाना चाहिए। दिशा की बात करें तो शेड हमेशा पूर्व से पश्चिम यानी अगुण से आथुण की दिशा में लंबो होना चाहिए। अरे पर सूरज की जो कि सीधी धूप है, सीधो तावड़ो है, तेज़ हवा है, ये सीधी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आंसों के मुर्गी परेशान हो जाए। दूसरी ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो शेड की चौड़ाई 28-32 फुट और ऊंचाई 12-14 फुट रखनी चाहिए। फर्श की पक्को होना चाहिए ताकि चूजा और अन्य जीव नीचे न गिरे और फर्श पर दान को छिलको जिन्हें राइस हस्क बोले वो बिछा देना चाहिए 3-4 इंच मोटो, इन्हें लीटर भी कहे। दूसरा जो कोई चरण है किसान भाई हुए ब्रूडिंग, जो को सबसे जरूरी चरण है। जब छोटा चूजा 1 दिन का हुए फार्म पर आवे तो माने माँ की जकी गर्मी है बिंगी जरूरत हुए, ये सारू कृत्रिम रूप से मंगू तापमान देनो ब्रूडिंग कहलावे। पहले हफ्ता में शेड को तापमान आपने 32-35 डिग्री रखना चाहिए। इमें सारू की आप हल्का और मोटा बल्ब लगा सकें, हीटर को भी इस्तेमाल कर सकें और चूजा का

श्रोताओं, समय अब बाज़ार भाव को, तो आपने कने गंगानगर मंडी का बाज़ार भाव पूगता होया है। गंगानगर में सरसों का भाव रहा 5850-7473 रुपया, चना का आठा भाव रहा 5120-5345 रुपया, और कणक का आठा भाव रहा 2361-2655 रुपया, गवार आठा बिक्यो 5490-5562 रुपया, और मूंग आठे भाव रहा 6500-7015 रुपया। तो ये आज का बाज़ार भाव। और अब अपने कार्यक्रम को जो समय है वो पूरा होने लाग रही है, तो थारे सुनील भाई ने दियो आ गया। राम राम सा राम राम।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए आशिकी फिल्म का गीत, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवण का।

शतवली जी, अब सुनिए, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।
1: सुनिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति हास्य झलकी सेल्फी सुख, दिनांक 8 जुलाई 2026 बुधवार सुबह 9:30 बजे।
2: फेसबुक पर भी अंगूठा, इंस्टाग्राम पर अंगूठा, व्हाट्सएप पर अंगूठा, हर रील पर अंगूठा, दिन भर अंगूठा ही अंगूठा। हमारे हिसाब से फोन तो स्मार्ट हो गया पर आदमी फिर से अंगूठा छाप हो गया।
1: सुनना ना भूले बुधवार सुबह 9:30 बजे दिनांक 8 जुलाई 2026 को आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति हास्य झलकी सेल्फी सुख।
0: शतोरात्रि के 8 बज चुके हैं और आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है आपकी कसम। गीत सुनवाएंगे और बातचीत भी करेंगे। स्वीकार करें अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार इस बात के साथ कि आपकी कसम फिल्म का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। यह हमारा विशेष फिल्म संगीत कार्यक्रम है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक ऐसी फिल्म की ओर जिसके गीतों ने पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया है। जी हां, जैसा कि हमने पहले बताया, ये फिल्म है वर्ष 1974 में प्रदर्शित आपकी कसम। फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे जे ओम प्रकाश। मुख्य भूमिकाओं में थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। फिल्म का संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने और गीतों को

शब्द दिए थे आनंद पक्षी ने। साथियों, ये फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास संदेह रिश्तों की नाजुकता और पश्चाताप की कहानी भी है। यही कारण है कि इसके गीत कहानी के साथ इतने खूबसूरती से जुड़े हुए हैं कि हर गीत अपने आप में एक भावनात्मक अध्याय बन जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें प्रेम की मासूमियत और अपनापन और पति पत्नी के रिश्ते की मधुर छेड़छाड़ सुनाई देती है।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम का ये मधुर गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये गीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना अपनी रिलीज़ के समय लगता था। दोस्तों, 70 का दशक हिंदी सिनेमा में संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होते थे। आपकी कसम इसका एक शानदार उदाहरण है। साथियों, फिल्म में राजेश खन्ना ने कमलेश नामक युवक की भूमिका निभाई है जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है, लेकिन एक गलतफहमी उसके जीवन की दिशा बदल देती है। यही भाव आगे चलकर फिल्म को एक मार्मिक मोड़ देता है। फिलहाल सुनते हैं फिल्म का एक और लोकप्रिय गीत।

साथियों, आपकी कसम, फिल्म के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें प्रेम के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। कहीं शरारत है, कहीं अपनापन, कहीं विश्वास और कहीं बिछड़ने का दर्द। संगीतकार राहुल देव बर्मन अपने प्रयोगधर्मी संगीत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस फिल्म में मधुर धुनों का ऐसा संयोजन किया कि गीत सीधे दिल तक पहुंच गए। गीतकार आनंद बख्शी ने भी बहुत सहज और बोलचाल की भाषा में भावनाओं को व्यक्त किया। जी हां, बारी है एक ऐसे गीत की जो प्रेम में प्रतीक्षा और बेचैनी का एहसास कराता है।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। आज की फिल्म है 1974 में प्रदर्शित हुई फिल्म आपकी कसम। मधुर गीत तभी आपने सुना, क्या खूबसूरत शब्द, यही एक गीत हैं जो समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना उस दौर के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके नाम मात्र से सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लग जाती थी। वहीं मुमताज अपनी सहज अभिनय शैली और चुलबुले अंदाज के कारण दर्शकों की प्रिय अभिनेत्री थी। दोनों की जोड़ी ने कई सफल फिल्मों में काम किया और आपकी कसम उनमें से एक महत्वपूर्ण फिल्म है। हम माहौल को थोड़ा रंगीन और उत्सवमय बनाते हैं। फिल्म का अगला गीत आज भी त्योहारों, आयोजनों और संगीत कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से सुना जाता है। आइए सुनें।

दोस्तों, किसी भी सफल फिल्म का संगीत तभी अमर बनता है जब वो श्रोताओं के जीवन का हिस्सा बन जाए। आपकी कसम, फिल्म के गीतों ने यही किया। रेडियो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, कैसेट्स और बाद में डिजिटल माध्यमों तक इन गीतों की लोकप्रियता बनी रही। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अंतिम गीत है वो गीत जिसे हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यादगार दार्शनिक गीतों में शामिल किया जाता है। ये गीत हमें जीवन की अनमोल सच्चाई से रूबरू कराता है कि समय और अवसर एक बार निकल जाएं तो लौटकर नहीं आते। किशोर कुमार की भावपूर्ण आवाज, आनंद बख्शी के गहरे शब्द और राहुल देव बर्मन का कालजी संगीत, इन सब ने मिलकर इस गीत को अमर बना दिया है।

श्रोतवे की फिल्म से कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं आपकी कसम फिल्म के गीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे रात 10:30 पर। अभी आप सुने ये गीत और एक ही फिल्म से कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आ कहते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी आपकी कसम। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कल नॉटिंगम में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से, तथा इंग्लैंड और नॉर्वे ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गॉफ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और तीरंदाजी विश्व कप का चौथा चरण कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा।

0: तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की एक शानदार उपलब्धि के साथ, जिसने सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया।
1: And it's going to be brought up in not the greatest of ways for England, but Australia will take it. And in the backyard of their oldest foe, at the home of cricket, Australia have not just claimed their 7th World T20 title.
2: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में महिला क्रिकेट के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने आई। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। टीम ने 11वें ओवर तक 70 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। यहां से कप्तान नेट साइबरब्रंट ने फ्रिया कैंप के साथ 5वें विकेट

0: के लिए 55 गेंदों में 80 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ब्रंट 53 गेंदों में 58 रन और कैंप 28 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में यह मुकाबला जीत लिया। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद बेथ मुनी और फोएब लिचफील्ड ने 67 गेंदों में 100 रन की साझेदारी करते हुए इस अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत कर दी। मुनी ने 49 गेंदों में 64 और लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। एलिस पेरी ने अंत में नाबाद 13 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को उसका रिकॉर्ड 7वां टी20 खिताब दिलवाया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो वर्ष 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में 2026 भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच कल नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से पीछे है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की मैन्स इन ब्लू के लिए ये मैच में बहुत कुछ दाव पर रहेगा। और इस मैच और क्रिकेट के मैदान की ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, कल जब भारतीय टीम उतरेगी नॉटिंगम में तो क्या कुछ दाव पर रहने वाला है इस टीम के लिए?
2: शक्ति, अगर कल भारत ये मैच हार जाती है तो आयरलैंड की तरह ही ये मुकाबला, ये सीरीज भी भारत अपने नाम नहीं कर पाएगी। भारत के पास इस मुकाबले को, इस सीरीज को ड्रॉ करने का ही मौका बस बचेगा। अगर हम बात करें विश्व कप जीतने के बाद से लगातार भारत का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। पहले आयरलैंड से 2-0 की हार मिली, फिर इंग्लैंड से पहला मैच बारिश के कारण धुल गया और दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो अब तीसरे मैच में भारत के पास जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर हम बल्लेबाजी क्रम में बात करें जो कि कल खेल सकती है, उसमें युवा वैभव सूर्यवंशी होंगे जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, अभिषेक शर्मा हैं, ईशान किशन होंगे, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे टीम में हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो टीम बदलाव भी कर सकती है। शक्ति, संजू सैमसन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था विश्व कप में, उसको प्लेइंग 11 में फिर से वापस ला सकती है। लेकिन भारत की असली चिंता बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी है, जिन्होंने लगातार डिसअपॉइंट किया है। चाहे हम आयरलैंड सीरीज की बात कर ले या फिर हम इंग्लैंड सीरीज की बात कर ले, दूसरे अगर टी20 की भी बात करें तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था गेंदबाजी से। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई काफ़ी महंगे साबित हुए थे, जिसके कारण भारत श्रृंखला में पीछे है।
1: जी बिल्कुल, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल टीम की नज़र हर हालत में जीत दर्ज करने पर होगी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। प्रशांत, प्रशांत कप्तानी तो श्रेयस अय्यर के हाथों में है, लेकिन क्या नए बदलाव के साथ ये टीम उतरेगी जिम्बाब्वे में?
2: इस टीम में शक्ति फिनिशर रिंकू सिंह जिन्होंने विश्व कप खेला था भारत के लिए, उनकी वापसी हो रही। इनके अलावा प्रिंस यादव जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। IPL में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन था जिनको टीम में शामिल किया गया, जिनमें प्रिंस यादव हैं, यश ठाकुर हैं, अशोक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। वहीं अशोक शर्मा ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की थी IPL में, जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया। वहीं हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। और इसके अलावा अगर इंग्लैंड दौरे पर हम बात करें तो अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जिनको मौका मिला है, उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए शामिल नहीं किया गया टीम में। विकेट कीपिंग का जिम्मा जो है वो नए खिलाड़ी प्रभ सिमरन सिंह को सौंपा गया, जिनकी तारीफ हमेशा युवराज सिंह भी करते रहे हैं उन्होंने। और उनके साथ विश्व के नंबर एक बल्लेबाज टी20 में ईशान किशन को भी टीम में जगह दी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है शक्ति कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को टीम में नहीं शामिल किया गया है। और श्रृंखला की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को ये श्रृंखला खेली जाएगी।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, इन तमाम नामों के बीच में श्रोता एक नाम और सुनना चाहते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी सीरीज का हिस्सा हैं?
2: बिल्कुल, वैभव को इस सीरीज में लगातार टीम में शामिल किया गया है। शक्ति,
1: तो बिल्कुल उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी वापस अपने IPL की फॉर्म को बरकरार रखते हुए जिम्बाब्वे में भी नजर आएंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा, वहीं सुबह 5:30 बजे अमेरिका की भिड़ंत बेल्जियम से होगी। इससे पहले इंग्लैंड और नॉर्वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
3: इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज सुबह एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लिश टीम ने मैक्सिको को 3-2 से हराया। मैच का पहला गोल 36वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से जूड बेलिंगहम ने किया। इसके ठीक बाद 38वें मिनट में बेलिंगहम ने फिर गेंद को गोल कोस्ट में पहुंचाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया। हालांकि मैक्सिको ने जल्द ही मुकाबले में वापसी की और क्विनोन्स ने 42वें मिनट में मैक्सिको के लिए

0: गोल किया। मैच के 60वें मिनट में इंग्लैंड को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में बदलकर टीम की बढ़त को 3-1 से कर दिया।
1: बेलिंगम, इंग्लैंड कमिंग अगेन, इट्स हैरी केन एंड बेलिंगम अगेन, 2-2 मिनट्स फॉर इंग्लैंड हु आर इन मेक्सिकन ड्रीमलैंड, इट्स इंग्लैंड्स किंग केन हु स्ट्राइक्स अगेन फॉर द थ्री लायंस।
0: मैच के 69वें मिनट में राउल जिमेनेज ने मेक्सिको के लिए एक पेनल्टी को गोल में तब्दील किया। इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका और इंग्लैंड की टीम अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल रही। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच के 79वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने नॉर्वे की ओर से मुकाबले का पहला और 90वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई।
1: He has nailed it for Norway, their greatest day, their mightiest hero.
0: इंजरी टाइम में पेनल्टी पर नेमार जूनियर ने ब्राजील के लिए पहला गोल तो दागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गोल नेमार के करियर का आखिरी गोल साबित हुआ और उन्होंने मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 वर्षीय नेमार के नाम ब्राजील की तरफ से सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में खेले कुल 130 मुकाबलों में 80 गोल किए जबकि 59 असिस्ट भी किए। 2012 में ओलंपिक में रजत पदक और 2016 ओलंपिक में ब्राजील को स्वर्ण पदक दिलाने में नेमार ने अहम भूमिका निभाई थी। अब क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: और फुटबॉल के बाद अब रुक करते हैं टेनिस कोर्ट का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के फ्लोवियो कबोली ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को हरा दिया है। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के टेलर फिट्स का मुकाबला कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्किफ तथा चेकिया के जीरी हेलेका का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। बुल्गारिया के गिग्रोव दिमित्रोव का मुकाबला ब्रिटेन के आर्थर फेरी से होना है। महिला सिंगल्स में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने चेकिया की मारी बोकोजवा को 6-4, 6-4 से हराया, जबकि इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने फिलीपींस की एलेक्सेला को 6-4, 6-6, 6-3 से हराया। इससे पहले कल नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गोफ ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
3: विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में कल कई अहम मुकाबले खेले गए। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोमान सफीउल्लिन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इटली के यानिक सिनर ने जापान के शिंतारो मोचीजुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिमे ने स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1 से हराया, जबकि जॉन लेनार्ड स्ट्रफ ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने हमवतन ईवा जोविक को 4-6, 6-3, 6-1 से हराया। जापान की नाओमी ओसाका ने आर्याना संबालेका को 6-2, 7-6 से हराया। एक अन्य मुकाबले में अमरीकी कोको गॉफ ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिक को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया। यूक्रेन की मार्ता कोत्स्यूक ने अमेरिका की एश्लीन क्रूगर पे 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो विश्व का ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट अब अपने क्वार्टर फाइनल की दौड़ में प्रवेश करने जा रहा है, जहां से इसका रोमांच अब हर दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण की, जो कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा। तो आइए जानते हैं इस चरण में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी फाइनल चरण और अंकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे।
4: भारत के 16 सदस्यीय दल की अगुवाई धीरज बोमो देवरा, कुमकुम अनिल मोहोड़ और ज्योति सुरेखा वेन्नम कर रहे हैं। 4 चरणों में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप का ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इस वर्ष के आखिर में मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। मैड्रिड मीट में 51 फेडरेशनों के 392 रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाज 7 से 12 जुलाई तक पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोमो देवरा, यशदीप संजय भोगे, नीरज चौहान और अतानु दास शामिल हैं। महिलाओं के रिकर्व इवेंट में सबकी नजरें कुमकुम अनिल मोहोड़, कीर्ति शर्मा, अंकिता भकत और दीपिका कुमारी पर रहेगी। कंपाउंड वर्ग में ज्योतिका सुरेखा महिलाओं की टीम की अगुवाई करेंगी। उनके साथ चिकित्सा तानी पार्थी, पृथिका प्रदीप और परनीत कौर भी टीम में हैं। पुरुषों की कंपाउंड टीम में गणेश मणिरत्नम

0: थिरुमुरु, साहिल जाधव, कुशल दलाल और ऋषभ यादव शामिल हैं। भारतीय तीरंदाजों ने इस वर्ष तीरंदाजी विश्व कप में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ऐसी टीम जहां के अधिकतर खिलाड़ियों की नजरें होंगी कि किस तरह एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी को और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। और एक और टूर्नामेंट शुरू होने को है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां 8 जुलाई से 5वीं भारतीय ताइक्वांडो, पुमसे और पैरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे सिक्किम संवाददाता ने बताया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य से 24 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
2: More than 24 athletes from Sikkim will compete in the 5th India Taekwondo Pumse and Paranational Championship. Sikkim's athletes will participate in a range of events including Freestyle Team Pumse, Junior Team Pumse, Under-17 Freestyle Pumse Female. The team will lead by coaches Ganga Pradhan, Saroj Gurung, Ugen Gurung and Sunil Limbu. Medal winners will be shortlisted for the final India National Camp Selection Trials, with successful athletes earning the chance to represent India at the 2026 World Taekwondo Pumse Championship in Chuncheon, South Korea. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok.
1: और अब बात करते हैं भारतीय पहलवानों की, खासकर युवा पहलवानों की, जिन्होंने थाईलैंड में अंडर 20 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अपना अभियान 20 पदकों के साथ समाप्त किया। इनमें 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में भारत की महिला टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि भारत की पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने तीसरा स्थान अर्जित किया। महिला प्रतियोगिता के अपने सबसे बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इसमें सामने आई हैं, जिसमें से 10 में से 9 महिला पहलवानों ने भारत के लिए पदक जीते, जिसमें प्रवीण ने 50 किलोग्राम, मुस्कान ने 53 किलोग्राम, काजल ने 76 में अपनी अपनी कैटेगरी के स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि प्रवीण ने उज्बेकिस्तान की शेकिस्ता शोजान रोवा को 13-2 के बड़े अंतर से हराते हुए ये पदक अपने नाम किया था। अगर पुरुषों के फ्रीस्टाइल की बात की जाए तो वहां पर सुमित कुमार लक्ष्मण ने 70 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।

0: आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा

0: की नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भाषा होगी

0: की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे

0: दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing announcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and

0: सुनिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति हास्य झलकी सेल्फी सुख, दिनांक 8 जुलाई 2026 बुधवार सुबह 9:30 बजे।
1: फेसबुक पर भी अंगूठा, इंस्टाग्राम पर अंगूठा, व्हाट्सएप पर अंगूठा, हर रील पर अंगूठा, दिन भर अंगूठा ही अंगूठा। हमारे हिसाब से फोन तो स्मार्ट हो गया, पर आदमी फिर से अंगूठा छाप हो गया।
0: सुनना ना भूले बुधवार सुबह 9:30 बजे दिनांक 8 जुलाई 2026 को आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति हास्य झलकी सेल्फी सुख।
2: श्रोतो सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं चंदन दास।

0: सुनिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति हास्य झलकी सेल्फी सुख, दिनांक 8 जुलाई 2026 बुधवार सुबह 9:30 बजे।
1: फेसबुक पर भी अंगूठा, इंस्टाग्राम पर अंगूठा, व्हाट्सएप पर अंगूठा, हर रील पर अंगूठा, दिन भर अंगूठा ही अंगूठा। हमारे हिसाब से फोन तो स्मार्ट हो गया, पर आदमी फिर से अंगूठा छाप हो गया।
0: सुनना ना भूले बुधवार सुबह 9:30 बजे दिनांक 8 जुलाई 2026 को आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति हास्य झलकी सेल्फी सुख।

चंदन दास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10

0: साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है,
0: जी
1: वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज़ और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं,
0: जी
2: किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते।
0: जी
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं
0: जी
2: जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें
0: बिल्कुल
2: पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे ही नहीं मांगती है।
0: जी
2: और ऐसा है, इसका एक थम रूल है। थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए,
0: जी
2: अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी 1 मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है
2: क्यों, ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है,
0: जी
2: रिटर्न कॉल नहीं
0: ये
2: होती
0: सबसे
2: है।
0: बड़ी बात है। जी
2: हाँ,
0: बिल्कुल
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने
0: ट्रेस
2: की
0: कर
2: कोशिश
0: लेगी।
2: हो जाती है,
0: जी
2: रिकॉर्ड मिल जाता है,
0: जी
2: तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका। तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको 1 मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है। और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है, जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका
0: जी
2: क्या
0: जी
2: आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं, तो
0: जी
2: आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा
0: आ
2: है,
0: रहा है जी
2: कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो। उसके बाद अगर फ़ोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए,
0: बिल्कुल
2: अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल
0: कॉल
2: आपको
0: कर
2: 1 मिनट में कॉल करते हैं।
0: बिल्कुल अगर
2: रिटर्न
0: ऐसा
2: कॉल
0: समय
2: जब
0: नहीं है
2: करेंगे, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं होगा।
0: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है,
0: जी रवि
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ।
0: जी
3: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: नमस्कार
1: जी।
2: रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है।

0: करोड़ भी है तो वो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करे, और ये इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
1: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
2: जी।
1: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसमें आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
2: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
2: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है। तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
2: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार, सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मेरा एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन्स है आपको OTP भेजते हैं। आपके फ़ोन पे OTP आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे OTP आता है। कोई भी OTP तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी OTP को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप OTP को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को OTP आता रहता है अपने आप ही।

0: ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए, जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है, उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: सभी को नमस्कार
1: जी।
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करेंगे
3: आप।
1: गुड, गया शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ।
3: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ। तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट। 1930 में ये भी सुविधाएँ हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है। तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक थर्ड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज़्यादातर आपको गुमराह करने के लिए है।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी? नमस्कार।
3: नमस्कार,
1: नमस्कार जी। नमस्कार
4: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
4: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
3: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
3: स्टूडेंट्स
4: जी,
3: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की

0: बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड, बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है, या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज, राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से ले करके, और जो आपके 12th के, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल, चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर, लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके, कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीज़न के लिए अलग लागू किया है, जो सीनियर सिटीज़न का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, WhatsApp और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना, वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फोन से किया है, उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आप

0: आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फ़ीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फ़ीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फ़ीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ़ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए।
1: जी
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे, वो जो इतनी जो

0: थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे।
1: जी,
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
2: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं।
4: ये बात ज़रूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
4: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें।

0: तो शायद गिनती के नंबर तीन पे तो हम लोग हैं ही.
1: बिल्कुल.
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें. ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने. एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें.
1: बिल्कुल. और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें. हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं. पता है airnsgtalks@gmail.com. कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं. और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे. मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
3: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं. खेल जगत कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं.

0: खेलों की अवसंरचना में लगातार बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज भारत है विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा है। 2026 के पैरा ओलंपिक, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स एवं पैरा एशियन गेम्स में भारत के लिए अवसर बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और न केवल पैरा कॉमनवेल्थ एवं पैरा एशियन, हम पैरा ओलंपिक की भी बात करेंगे। तो किस प्रकार से भारत के अवसर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारी क्या संभावनाएं रहेगी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पद्म भूषण श्रीमान देवेंद्र जाजड़िया जी को। आप भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले सर आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जब हम बात करते हैं खेलों की, तो पिछले 12 वर्षों में खेलों के अवसंरचना में काफी बदलाव आया है और मानसिकता में भी काफी बदलाव आया है, तो किस प्रकार का बदलाव आप देखते हैं?
1: मेरे ख्याल में जो 12 साल में जो बदलाव आया खेलों में, वो एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। इतना बड़ा परिवर्तन मेरे ख्याल से 12 साल में कभी भी नहीं हुआ। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों और खेल दोनों को बहुत पसंद करते हैं। एक समय होता था जब हिंदुस्तान खेलों में कोई ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन आज आप देखते हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ, पेरिस पैरा ओलंपिक और ओलंपिक,
0: जी जी,
1: ओलंपिक में भले ही हम उम्मीद के मुताबिक हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में हमारे 17 खिलाड़ी रहे थे।
0: जी जी।
1: लेकिन जैसे ही पैरालंपिक स्टार्ट हुआ, और मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने बोला था अब की बार 25 पार।
0: जी जी।
1: और हमने 29 मेडल जीत करके मेडल टैली में 18वें नंबर पे रहे। और इसका आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने एक जारी किया था कि सबसे ज्यादा मेडल में किसी ने ग्रोथ की है तो वो इंडिया ने की।
0: जी जी।
1: तो ग्रोथ के मामले में इंडिया नंबर वन रहा पेरिस पैरालंपिक। आपने बात की आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन और पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ तो साथ में होते हैं, एक ही होता है कॉमनवेल्थ, मेडल टैली में सेम ही काउंट होते हैं पैरा का और एबल का, लेकिन पैरा एशियन अलग होते हैं, एशियन अलग हैं। कॉमनवेल्थ की बात करूं, बहुत ही शानदार हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हुई है। और पहली बार मैंने खुद ने एक मीटिंग ली थी, खेल को स्वच्छ बनाए, ये भारत सरकार का था। उसका मतलब ये होता है कि जब हमारे खिलाड़ी जाएंगे तो जैसे कहीं डस्टबिन है वहाँ पे हमें कूड़ादान में डालना है, कोई भी हमें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है, किसी को घूरना नहीं, हमें बुरी नज़र से नहीं देखना है, किसी की तरफ एग्रेसिव नहीं होना है, ये हमारे संस्कार है।
0: जी जी।
1: ये जो पुराने संस्कार थे हमारे, वो संस्कार भी है। और कॉमनवेल्थ के बारे में कहूँ आपको, विशेष तौर पर पैरा कॉमनवेल्थ के, मुझे क्योंकि यहाँ पैरा कॉमनवेल्थ में हमारे बहुत कम इवेंट होते हैं, लेकिन अब की बार हम पैरा कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी हैं वो ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे, वो हाईएस्ट मेडल जीतेंगे, आज तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा मेडल जीतेंगे, ये मैं आकाशवाणी में घोषणा करके जा रहा हूँ।
0: जी, बहुत ही सुखद बात है और हमें उम्मीद भी है कि जो आप घोषणा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कार्यान्वित भी होगी और देश का मस्तक है वो, तिरंगे की शान है वो लहला उठेगी। जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की, तो जो खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक विशेष होती है ताकि वो मेडल जीत सके, तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो दी जाती है?
1: देखिए, 12 साल में जो बदलाव आया सुविधाओं का, ये इतना बड़ा बदलाव है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर के आए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में जो खिलाड़ी आता है उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो होती है पॉलिसी और एक होती है पॉलिसी इम्प्लीमेंट। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। खिलाड़ी एक मेल डालता है मिनिस्ट्री के पास कि मुझे यूरोप ट्रेनिंग पे जाना है, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के भी अधिकारी हैं और एक पीएमओ का अधिकारी रहता है
0: जी।
1: तो उसमें क्या होता है, जैसे ही खिलाड़ी कुछ सुविधाएं मांगेगा, वो इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहता है, बाहर ट्रेनिंग करना चाहता है, उसको पूरा संपूर्ण खर्चा भारत सरकार उठाती है। फिर मोदी जी ने कहा कि खिलाड़ियों का तो हम खर्चा उठा ही रहे हैं, उन्होंने देखा कि कई ऐसे किसान फैमिली से बच्चे आए, ऐसे मजदूरों के बच्चों ने मेडल जीता, तो उन्होंने कहा इस फैमिली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये पर मंथली पॉकेट मनी दी जाती है खिलाड़ी को कि तेरे परिवार को भी ध्यान रख पाई।
0: जी जी।
1: ये दर्शाता है। और जो आधुनिक सुविधाएं दी हैं

0: अर्थ में आप देख रहे हो जूनियर लेवल पे हमने जो परफॉर्मेंस दी है, यही नतीजा है कि आने वाले समय में भारत एक अग्रणी देश होगा स्पोर्ट्स में।
1: जी हम बात कर रहे थे पैरा कॉमनवेल्थ एवं पैरा एशियन गेम्स में, और आपने किस जिस प्रकार से हमें आशान्वित किया है कि भारत है वो बहुत ही अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगा। खेल के प्रति ऐसा लगाव भी ऐसा है कि हम हमारे खिलाड़ियों से बहुत अधिक उम्मीदें करते हैं और अधिकतर हमारी उम्मीदें पूरी भी करते हैं, लेकिन क्या वजह रहती है कि जो ओलंपिक में हम जाते हैं तब हमारा प्रदर्शन इतना मानक के अनुरूप नहीं रह पाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम जब ओलंपिक लॉस एंजल्स में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रदर्शन करेंगे।
0: 100% एलए में जो ओलंपिक पैरालंपिक होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं पैरालंपिक में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैसे नियर टॉप 10 पहुंचे।
1: जी
0: और जब टॉप 10 में आप आते हो तो हमारा जो संकल्प है
1: जी
0: 2047 विकसित
1: भारत,
0: तो उसमें पहला टारगेट यही है कि टॉप 10 में आना। तो सबसे पहले विकसित भारत की कोई सीढ़ी चढ़ेगा वो दिव्यांग खिलाड़ी चढ़ेगा।
1: जी जी जी
0: ये अपने आप में बड़ी बात है। खेलों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो ट्रेनिंग प्लान है भारत सरकार का, स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जूनियर खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ एलए में हमारी पूरी टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस।
1: जी आप स्वयं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपने देश का नाम भी है बहुत बार गौरवान्वित किया है, वर्तमान में आप भारतीय पहला ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो जब आने वाले समय में अहमदाबाद में भी कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे और साथ साथ भारत सरकार है 2034 में ओलंपिक को भी होस्ट करने के लिए प्लानिंग चल रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की तैयारियों की जरूरत है?
0: देखिए भारत की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है, दुनिया ने उसको माना कि भारत कुछ भी कर सकता है, उसी श्रेणी में हमें कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेकेंड टाइम भारत कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहा है, कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं बताना चाहता हूँ यदि हमारे 2036 की जो ओलंपिक पैरालंपिक है हमने दावा किया मेजबानी का, उसमें सबसे बड़ी हमारी कोई ताकत होगी तो ये कॉमनवेल्थ गेम होगा। हम अच्छा कॉमनवेल्थ गेम करवाएंगे। इससे आगे कुछ परफॉर्मेंस देखी जाती है कि प्लेयर वहाँ के कैसे हैं, तो उसमें जैसे हम मेडल टैली में पैरालंपिक में हम 18वें नंबर पे रहे, इसका मतलब ये है कि गेम में भी भारत स्ट्रांग है।
1: जी जी
0: भले ही हम ओलंपिक में थोड़े से पिछड़े हैं लेकिन पैरालंपिक हमारा बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है। और जो आईपीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ओलंपिक हमें कहाँ देना चाहिए, तो उस श्रेणी में हम आगे हैं। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारी 36 की जो ओलंपिक हमारे मेजबानी मिलेगी वो एक ऐतिहासिक ओलंपिक होगा हमारा।
1: पहले एक नारा चलता था कि अगर खेलोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और वर्तमान में सरकार ने इस नारे को पूरी तरीके से चरितार्थ है वो चेंज कर दिया है। आज अगर जो खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, अगर वो अच्छे तरीके से खेल रहा है और बहुत अधिक मेहनत करके अगर करना चाहता है तो उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर सकता है, तो खेलों में किस प्रकार से युवा है वो अपने करियर बना सकता है?
0: देखिए प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, उसका टारगेट क्या था, जूनियर लेवल के वो बच्चे जिनको प्रतिभा तो है पर सुविधाएं नहीं उनके पास, वो किसान फैमिली से हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके लिए ये स्कीम आई खेलो इंडिया। ये जूनियर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में जब बच्चा जाता है खेलो इंडिया खेलने के बाद में जब सिलेक्शन होता है उसको सालाना उसको 8 लाख रुपए की फैसिलिटी मिलती है। और आप यकीन नहीं करोगे दुनिया के जो बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर हैं वैसी फैसिलिटी उनको यहाँ मिलती है। मुझे आज भी याद है जब हम पुराने टाइम में ट्रेन के लोकल केबिन में बैठ के जाते थे, आज 16 साल का बच्चा जब नेशनल खेलने जाता है तो भारत सरकार उनको फ्लाइट की टिकट देता है और वो ये कहता है ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। उसमें भी सालाना 8 लाख रुपए में आपको पर डे 500 रुपए की डाइट मिलती है, आपको एसी रूम मिलता है, आपको कोच मिलता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है, आपको फिटनेस ट्रेनर मिलता है और इवन आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलता है। एक बच्चे को इतनी फैसिलिटी मिलती है तो खिलाड़ी क्यों नहीं बनेगा। और उसको 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, सालाना 25,000 रुपये की उसको किट मिलती है। यानी जब बच्चा बैग उठा के घर से जाता है तो वो सरकार के गोद चला जाता है।
1: जी जी
0: ये स्कीम है खेलो इंडिया, उसको 10,000 रुपये पॉकेट मनी बहुत बड़ी बात है एक 16 साल 17 साल के बच्चे को मिलती है। यानी माँ बाप ये सोचते हैं कि अब हमें देने की जरूरत नहीं है, बच्चे को सब फैसिलिटी भारत सरकार देती है और वो पूरी इम्प्लीमेंट है। जब इम्प्लीमेंट होती है कोई पॉलिसी तो उसका रिजल्ट आता है।
1: जी जी जब हम बात करते हैं खेलों की तो खेलों में शारीरिक

0: के साथ साथ मानसिक क्षमता का विकास भी बहुत जरूरी है, खासकर जब हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने का। तो किस प्रकार से खिलाड़ी अपनी मानसिक क्षमता का विकास करता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है?
1: देखिए, मैं कह सकता हूँ खिलाड़ी से ज़्यादा मानसिक तौर पे फिट कोई नहीं हो सकता। खिलाड़ी एक ऐसा होता है जब वो कंपटीशन में खेलने जाता है, और जब वो कंपटीशन हार जाता है अगले दिन फिर वो ग्राउंड में जाता है
0: जी
1: कि मैं अगले टूर्नामेंट में जीतूंगा। यदि कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है बिजनेस में तो अगले दिन अपने बिजनेस पे नहीं जा
0: नहीं जाता।
1: पाता। इसलिए मैं कह सकता हूँ खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पर फिट होता है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने मानसिक तौर पर फिट करने के लिए कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट किए हैं कि कोई फिर भी प्रेशर में आए। कई बार क्या होता है, बाई कंट्री बहुत हमारे पे प्रेशर होता है, बाई फैमिली बहुत प्रेशर होता है, दर्शकों का बहुत
0: दस
1: प्रेशर रहता है, तो उन सबको कम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक जैसे खेलों में मैंने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो अलग बात है। मैं प्रेशर नहीं मानता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी प्रेशर नहीं मानता।
0: जी,
1: हर कई खिलाड़ी प्रेशर मानते हैं, तो मानसिक तौर पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी फिट होता है।
0: जब हम बात करते हैं 12 साल समृद्धि के, 12 साल विश्वास के और 12 साल सुरक्षा के, तो इन 12 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किया है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में किस प्रकार की उम्मीदें और बढ़ जाती है?
1: पिछली 12 साल को छोड़ दें तो भारत ने 60 सालों में 8 ही पैरालंपिक मेडल जीते, और इन 12 सालों में कितने जीते, 52 मेडल जीते। तो ये दर्शाता है ये दिव्यांगों के प्रति जो सोच है भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब वो सपना देख रहे हैं 2047 विकसित भारत का, तो ऐसे ही सपना पूरे होंगे। इसलिए काम बोलता है, उन्होंने काम किया है, हर वर्ग को उन्होंने टच किया है। इसलिए कहते हैं सबका विकास सबका साथ
0: जी
1: सबका
0: जी
1: विश्वास।
0: सबका साथ सबका विकास, और इसी ध्येय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: बस मैं युवाओं को इतना संदेश देना चाहता हूँ आपके रेडियो के माध्यम से कि ज़िंदगी में आप निराश ना हो, और सबसे बड़ी आपकी कोई ताकत है तो वो ये है कि आप अपने आप पे विश्वास करें कि मैं कर सकता हूँ। आइए हम सब मिलकर के इस देश को दुनिया की ऊंचाई पे लेकर के जाएं।
0: जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के खेलों के क्षेत्र में बढ़ते कदम विषय पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया से अमित कुमार की बातचीत। यह आकाशवाणी चूरू का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खिलाड़ी अंजू मेहरिया से गोपाल लखन की बातचीत।
3: श्रोताओं, यदि मन में हौसला बुलंद हो तो हम आसमान को भी छू सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से निकलकर जब हम बड़े शहरों की नेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं अपने खेल के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, तो दुनिया हमें जानने लगती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अंजू मेहरिया। अंजू मेहरिया एक सफल खिलाड़ी हैं, और इनका कोई एक खेल नहीं है, कई खेल हैं। जैसे आप कबड्डी की नेशनल प्लेयर हैं, एथलेटिक्स में 1500 मीटर की दौड़ आप करती हैं, और अमेरिकन फुटबॉल स्टाइल का एक गेम है रग्बी, उसमें भी आप महारत हासिल करती हैं। आज जानते हैं अंजू मेहरिया के खेल जीवन के बारे में। अंजू नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार सर।
3: अंजू मेहरिया, सबसे पहले अपने कहां से आपने शुरुआत की, कैसे आपका खेलों की दुनिया में आना हुआ?
4: सर, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों का बाहर आना बड़ी मुश्किल होता है। घर गृहस्थी को संभालना, फैमिली को संभालना, ये सब कुछ पहले ही लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को जल्दी ये जो सामान्य बातें हैं वो जल्दी ही संभाल ली जाती है।
3: जी।
4: मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, इसलिए मेरा भी बहुत मुश्किल था बाहर आना। हम 3 बहनें थी, आसपास का माहौल ऐसे था कि लड़कियों को छोटी मोटी पढ़ाई करके गांव गांव में छोटे मोटे काम धंधों में जोड़ दिया जाता था, जल्दी शादी विवाह कर दिया जाता है सर। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद प्लस उनकी एक लड़कों के प्रति जिस सोच को वो आगे बढ़ाते, उसी प्रकार हम लड़कियों के प्रति भी वो अच्छा सोचे और हमारे को भी आगे बढ़ने का मौका दिए सर। मैं खेल में इतना नहीं जानती थी, सामान्य परिवार से थी तो बाहर गांव में खेल झूल होता था तो इतना बाहर भी नहीं आते थे। जब स्कूल हुई, कॉलेज हुए, उसके बाद जब मेरा सर मेरे यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज में एडमिशन हो गया था
3: जी।
4: तब मैं बाहर निकलना थोड़ा प्रारंभ की। माता पिता को समझाया कि सर बाहर निकलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद जब मैंने आर्मी की तैयारी शुरू की तो मुझे एक एकेडमी मिली जहाँ पे मैं सामान्य परिवार से तो थी,

0: नहीं, सपोर्ट नहीं था कि पैसे वगैरह मिल सके और मैं एक आर्मी की अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर सकूँ। तो फिर एक मुझे फ्री डिफेंस एकेडमी मिली जिसका नाम था राम डिफेंस एकेडमी। वहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग होती है, तो सर मैंने वो ज्वाइन की। मेरा BSF ट्रेडमैन में हो गया था बट मैंने ज्वाइन नहीं की, ताकि मैं स्पोर्ट्स में आना चाहती थी सर। स्पोर्ट्स में आने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल में मेरे गोल्ड मेडल लगा सर कबड्डी में। इसके बाद में मैंने BPED में एडमिशन लिया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अभी उड़ीसा भुवनेश्वर में मेरा मैच हुआ था, लेकिन मेडल नहीं लग पाया सर। उससे पहले मेरे नेशनल में तो मेडल था।
1: अच्छा, जैसे आपने कबड्डी खेल चूज किया सबसे पहले, फिर आप एथलेटिक्स में आ गई, तो कबड्डी खेल से जो चुनने के लिए सजेस्ट किसने किया था, माता पिता ने या आपके जो एकेडमी के सर थे उन्होंने?
0: सर माता पिता ने भी किया कि जो तेरे को पसंद हो वो गेम चूज कर। उसके बाद मैंने जब डिफेंस ज्वाइन की तो मैं आर्मी की तैयारी करती थी, तो 1600 मीटर तो मेरी दौड़ थी। उसके साथ साथ मेरी स्टेमिना अच्छी होने के कारण मैंने कबड्डी ज्वाइन की, उसमें मेरे अच्छा प्रोग्रेस दिखा। तो जब कोच वगैरह के माध्यम से भी ये पता लगा कि तू बहुत अच्छा कर सकती है, तो मैंने ना कबड्डी के अंदर जब मेरा मैच हुआ उसमें नेशनल में मैंने गोल्ड जीता, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हर एथलेटिक हर गेम को कवर कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने जो फिर अमेरिकन फुटबॉल है रग्बी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चयन हुआ। मैंने 7-side प्लेयर में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया सर उसमें।
1: जब आप जिला स्तर पर पहली बार खेली और फिर आप स्टेट में खेली, नेशनल में खेली, तीनों बार खेलने में कुछ फर्क रहा होगा कि क्योंकि हर बार आप लेवल आपका बढ़ता गया, तो डर लगा आपको कि मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी?
0: सर शुरू में तो डर लगता था, लेकिन जब कोच वगैरह साथ के साथ ही रहते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं, इस बार हार जाएंगे अगली बार जीत जाएंगे। लेकिन एक हौसला ही बड़ा होता है सर। कोच वगैरह साथ रहते थे, घर से बात होती थी, तो बोलते थे कोई बात नहीं, हारना जीतना वो सब किस्मत की बात है, लेकिन अपना पूरा 100% देना सर। तो इस वजह से अच्छा ही होता था।
1: अच्छा, कबड्डी में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और एथलेटिक्स में भी, जब आप गेम खेलने जाती हैं तो किस तरह तैयारी करती हैं?
0: सर एथलेटिक तो मेरा जब आर्मी की तैयारी करती थी तो वो तो कंपलसरी मेरी रनिंग वगैरह सब पहले से स्टार्ट था। उसके बाद जब कबड्डी में होता है तो उसमें थोड़ा वेट वगैरह बढ़ाना होता है, तो ऐसे होता था जिस प्रकार मैं एथलेटिक ही करती थी उसकी अपेक्षा थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता था। कबड्डी में अपनी स्टेमिना थोड़ा बॉडी बनाना पड़ता था इससे, ताकि कबड्डी आसान गेम नहीं है सर, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लगने की होती है, ताकि मैं ये भी सोचती थी अगर इसमें लग गई तो मेरा एथलेटिक गेम छूट जाएगा 1500 मीटर जो है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हालांकि छोटी मोटी इंजरी आती रहती है, लेकिन खिलाड़ी को सर इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता।
1: आपने एथलेटिक्स में भी 1500 मीटर चुना, 100 मीटर क्यों नहीं?
0: सर मेरी स्टेमिना अच्छी थी बट मैं आर्मी की भी तो करती थी ना साथ में, तो मेरा BSF में हो गया तो 1600 मीटर वैसी मेरी थी जो रनिंग होती थी। उसके बाद में मैंने इवेंट को 1500 मीटर ही चुना। यूनिवर्सिटी में मेरे मैच हुए, इंटर कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मैंने 1600 मीटर को छोड़ के मैंने 1500 मीटर किया, क्योंकि उसमें मेरा टाइम कवर अच्छा आ रहा था सर।
1: 1500 मीटर की जब दौड़ होती है तो स्टार्ट किस तरह से लेते हैं? कुछ खिलाड़ी बहुत तेज भागते हैं शुरू में, बाद में वो धीमे पड़ जाते हैं, तो जब स्टार्ट लेता है खिलाड़ी किस तरह से लेता है, और अगर जीतने की ख्वाहिश हो तो क्या उसमें स्ट्रेटेजी रहती है हमारी?
0: जब सर 1500 मीटर की रनिंग स्टार्ट करते हैं उसके अंदर सबसे पहला राउंड होता है, उसको अपन नॉर्मल तरीके से लेते हैं। लेकिन सर जब दूसरा और तीसरा राउंड होता है उसमें अपनी स्टेमिना खोल दी जाती है, और जब लास्ट का 500 मीटर का राउंड होता है सर उसमें सब कुछ भूल के वो जीत की आस की उम्मीद पे
1: सर सारा दम आखिरी 500 मीटर में लगाना पड़ता है। रग्बी की तरफ फिर कैसे आना हो गया, वो भी एक डिफरेंट गेम है, जबकि आप पहले से ही रनिंग कर रही थी?
0: रनिंग उसमें एथलेटिक का ही एक माध्यम है वो भी सर।
1: अच्छा,
0: उसमें ऐसे होता है कि जब गोल करना होता है तो वो बॉल जैसे फुटबॉल होती है उसको लेके अगली टीम के पास से गोल करना होता है, लेकिन सर वो भी एक मतलब 1600 मीटर जिस तरीके की रनिंग है ना उसमें भी दौड़ करके बाकी सामने वाले विपक्ष वाले खिलाड़ियों को छोड़ के अगली टीम के पास में गोल करना होता है, तो सर वो एथलेटिक का ही था। इसलिए मेरा 1500 मीटर अच्छा था इसलिए मैंने सर वो एथलेटिक वाला गेम यूज किया, क्योंकि उसके अंदर भी अमेरिकन जो फुटबॉल है उसमें थोड़ी रेस ज्यादा होती है।
1: आपकी खेल जीवन भी आपका लगातार चलता रहा और आपकी पढ़ाई भी, आपने ग्रेजुएशन किया है और अभी आप फिजिकल एजुकेशन कर रही हैं डिग्री के लिए BPED, तो दोनों में तालमेल कैसे बिठाती है, खेल और पढ़ाई एक साथ?
0: सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ वो यूनिवर्सिटी महारानी से हुआ, उसमें मैंने NCC भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे डर इस बात का था कि अगर अपन ने NCC कैंप ज्वाइन कर लिया तो अपनी पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि सर गांव में पढ़ाई का पहले वैल्यू रखा था घर वालों ने, उसके बाद रखा था कि गेम NCC वगैरह

0: जो भी है तू बाद में ज्वाइन करना। तो मैंने सर एनसीसी को छोड़ दी। उस टाइम पे मुझे डर था और बाकी किसी का मोटिवेशन मिला नहीं था।
1: चूंकि आप एक महिला खिलाड़ी हैं और ऐसे में जैसा आप बता रही थी कि ग्रामीण जीवन में तो काफ़ी जल्दी शादियां कर दी जाती है बच्चों
0: जी
1: की,
0: सर।
1: तो घर में जो सपोर्ट मिला मम्मी का ज़्यादा मिला या पापा का, या
0: सर
1: दोनों ने कहा कि नहीं जाओ
0: सर
1: खेलो?
0: दोनों का बराबर मिला। जी सर।
1: तो अभी जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगी, नेशनल के बाद इंटरनेशनल, और एक समय ऐसा आएगा जब तीनों खेलों में से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा, कबड्डी, एथलेटिक्स या फिर रग्बी, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगी?
0: सर वो तो वैसे मेरा माध्यम तो पहला 1600 मीटर ही था, जो मैंने लास्ट में इवेंट को चेंज करके अपना 1500 मीटर कर लिया था। सर मैं पहले एथलेटिक को दूंगी।
1: यानी आपकी प्रायोरिटी एथलेटिक्स है,
0: जी
1: 1500 मीटर
0: सर।
1: में आप लगातार रन करना
0: जी
1: चाहेंगी।
0: सर।
1: कई खिलाड़ी जो शुरू शुरू में किसी एक खेल में आते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरे खेल में आते हैं, और फिर ऐसे लगता है कि शायद उनमें परफेक्शन आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो बार बार खेल बदलते रहते हैं। ऐसे तमाम खिलाड़ियों के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे आप?
0: सर वो उनकी स्टेमिना पर डेवलप होता है। जैसे उनकी स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनका प्रोग्रेस भी बढ़ता रहेगा। इसके बाद जैसे खिलाड़ी को लगे कि अपना माध्यम ये गेम है, उसको ना अगर अच्छी मोटिवेशनल के साथ अच्छा प्रोग्रेस करे, अगर उसकी स्टेमिना बढ़ती हुई दिखे, तो उसको वही गेम चूज कर लेना चाहिए सर।
1: अंजुम एरिया, अभी आपका खेल जीवन काफ़ी बाकी है और आप नित नई ऊंचाइयां छुएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि जो सफलता आपको अभी मिल रही है ये आगे भी बरकरार रहेगी। एक मैसेज और चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो खेल जीवन में आना चाहती हैं और अपनी अपनी चमक खेल के माध्यम से पूरी दुनिया में बिखेरना चाहती हैं।
0: जी सर। मेरा कहना है कि मेरी छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को, कि वो अपना थोड़ा बॉयज़ की तरह खुल के जीवन जिए, अपने माता पिता को समझाए और अपना हुनर दिखाए बाहर, ताकि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ सके सर।
1: आपका कोई रोल मॉडल है खेलों की दुनिया में जिसको देखकर आप प्रेरित होती हो कि मुझे उस जैसा बनना है?
0: सर गेम में तो सबका रोल मॉडल होता है, लेकिन मेरा पर्सनल ख्वाहिश था कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि मेरे को एक बॉयज़ की ज़िंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है सर। जी सर।
1: तो चलिए आपके जो ये विश है पूरी हो जाए और आप नित नई ऊंचाइयां खेलों की दुनिया में बिखेरती रहें और प्राप्त करती रहें सफलताएं। अंजुम एरिया, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए और अपने खेल जीवन के बारे में हमें बताया, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर। आपको भी बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आके बोलने का मौका मिला।
2: अभी आप सुन रहे थे खिलाड़ी अंजू महरिया से गोपाल लखन की बातचीत। अब कार्यक्रम का समय हो चला है, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

सभी श्रोताओं को राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, वक्त बदल जाए तो किस्मत बदल जाती है, मगर कुछ यादें उम्र भर साथ निभाती है। साथियों, कभी कभी

कैद किसी इंसान से नहीं वक्त से होती है, ऐसा ही एक दर्द भरा नगमा जिसे सुनकर दिल की खामोशियां भी बोल उठती हैं। आइए सुने मुकेश की मधुर आवाज में ये गीत।

साथियों, इश्क में कुछ लोग मुकाम पा जाते हैं और कुछ उम्र भर दीवाने कहलाते हैं। मुकेश जी की दर्द भरी आवाज़ में सजा ये गीत मोहब्बत की सादगी और समर्पण का खूबसूरत एहसास कराता है। आइए सुने मिलन फिल्म का ये गीत।

मोहब्बत नाम है उस एहसास का जो हर सुबह और हर शाम साथ चलता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त और दूरी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अमर हुआ ये गीत, आइए सुने दोस्ती फिल्म से।

दोस्तों, दिल की दुनिया में तर्क नहीं चलते, यहाँ सिर्फ फैसले एहसास करते हैं। जब दिल किसी को अपना मान ले तो फिर कोई वजह नहीं पूछता। पेश है फिल्म शरारत का ये मधुर गीत।

साथियों, कुछ यादें बारिश की बूंदों जैसी होती हैं। छू जाए तो मन फिर भीग सा जाता है। किशोर कुमार की जादुई आवाज और भावनाओं से भरा ये गीत आज भी दिल को छू लेता है। आइए सुने अनामिका फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, सदियों से कोई आवाज़ दिल में ठहरी हुई है, किसी के इंतज़ार में एक लौ अब भी जली हुई है। दूरी चाहे जितनी हो, मोहब्बत हारती नहीं। सच्चे प्यार की पुकार कभी बेअसर जाती नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है इंतज़ार। जब कोई अपने प्रिय की राह देखते देखते हर सांस में उसका नाम बसा ले, तब दिल से एक ही पुकार निकलती है, आ जाओ। मोहम्मद रफी साहब की दर्द और भावनाओं से भरी आवाज में सजा ये कालजयी गीत प्रेम विरह और समर्पण का अद्भुत संगम है। हर शब्द दिल की गहराइयों से निकला हुआ महसूस होता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म नीलकमल का ये सदाबहार गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित

साथियों, गीत खत्म हो सकते हैं, एहसास नहीं। मुलाकातें रुक सकती हैं, यादें नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि ये सुर आपके दिल को छू गए होंगे। इजाजत दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को। नमस्कार।

0: और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, Members of Parliament,